हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

अचे सवा तुझे नसंद में सुकून अचे साईं लिखा छा छा नथो मज़मून अचे सवा तुझे नसंद में सुकून अचे ओ लिखा छा छा नथो मज़मून अचे सवा तुझे नसंद में सुकून अचे हिकु भेरो अचा पो बचान बचा हिकु भेरो अचा पो बचान बचा पूरी दिल जी उमेद थे जीने में महबूब घुरायो मदीने में सिक

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: It's 9 AM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: फ़ौज पंज दफ़ा में कार्रवाई कंदे समूरनि ईरानी ड्रोन्स खे किराए छॾियो आहे. ईरान पारां नार तरफ़ इतिहादी मुल्कनि ॾांहुं फायर कयल केतिरनि ई बैलिस्टिक मिसाइल ऐं ड्रोन्स खे पिण तबाह कयो वियो. ॿिए पासे ईरानी हथियारनि जो चवणु आहे त अमरीकी जंगी ॿेड़नि जी मौजूदगी ऐं चुरपुर ते वार्निंग जा फायर कया विया. फ़ौज जे दिफ़ाई निज़ाम ते अलर्ट. अरब टीवी मूजिब कुवैत जो फिज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ईरानी मिसाइल ऐं ड्रोन हमले खे रोके रहियो आहे. ईरानी ताक़तवर ऐं गैरतमंद आहिनि. उन्हनि खे झुकण या का ढील करणु डुखी लॻी रही आहे. उहो ई सबबु आहे जो ईरान सां जंगबंदी मुआदे ते अञा ताईं इतफ़ाक़ न आहे थी सघियो. अमरीकी टीवी खे इंटरव्यू ॾींदे सदर ट्रम्प चयो त ईरान वटि मुआदे खां सवाइ ॿियो को बि ढग न आहे. ईरान उहे क़दम खणण ते मजबूर थींदो जंहिं हुन कॾहिं तस्वर ई न कयो. जंग जे हल में वक़्तु लॻंदो. ही कम जल्दी में न थींदा आहिनि. ईरान वटि सिर्फ़ 21-22 मिसाइल बचा आहिनि. ईरान में असांखे कामयाबी मिलियूं आहिनि. अपनाए हुर्मुज़ बि काफ़ी आयल टैंकर गुज़री विया आहिनि. फ़िलहाल अंग ॿुधाइण नथो चाहियां. अस्पताल मामूल ते अचण बाद तेल जूं क़ीमतूं घटि थी वेंदियूं. ईरानी परे वज़ीर अब्बास राख़ी चयो आहे त सुप्रीम लीडर मुश्तवा ख़ामनाई ऐं ट्रम्प विच में मुलाक़ात वारियूं ॻाल्हियूं हक़ीक़त पसंद न आहिनि. ट्रम्प हक़ीक़ी दुनिया में न रही रहियो आहे. सऊदी अरब खिते जो वॾो मुल्क ऐं अहम रांदीगर आहे. ईरान ऐं सऊदी अरब गॾिजी खिते में अमन ऐं तरक़ी आणे सघनि था. ईरान हमेशा सऊदी अरब सां लाॻापनि खे अहमियत ॾींदो आहे. सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई हमले वक़्तु ऐं हुते आफ़िस में मौजूद हुअसि. मूंखे मलबे मां ॿाहिरि कढियो वियो. अमरीकी सदर जे चीफ ऑफ स्टाफ सोज़ी वाइल्स पारां उहिदो छॾण जो फ़ैसिलो. برطانوی میڈیا موجب سوزی وائلز کابینہ میں انتشار ہیں صدر ٹرمپ پارا تو ان کرنے پہ تنگ تھی استعفی دینے جو فیصلہ کیا. پیٹرول مشین کے اگن میں ایک بیرو بیہر معمولی لات پیٹرول 4 روپیہ فی لیٹر رستو. ڈیزل کی قیمتوں برقرار رکھی ہوئی ہوں. پیٹرول کی نئی قیمت 377.78 روپیہ فی لیٹر مقرر. डीजल जो अघु फी लीटर 380.78 रुपया बरक़रार. पेट्रोलियम शयुनि जा अघ अॼु खां ई लागू थी विया नोटिफिकेशन जारी. वफ़ाक़ी हुकूमत जो नंढनि दुकानदारनि लाइ फिक्स टैक्स स्कीम आणण जो ऐलान. नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त टैक्स ॾींदड़ आसानी चाहे थो. स्कीम ज़रिए 30-40 लख दुकानदारनि खे टैक्स जे दायरे में आंदो वेंदो. जेको तबिको टैक्स न ॾींदो उहो हाणे ॾियणु चाहे थो. मुमलकती वज़ीर बिलाल अज़हर कैनी चयो त मुशावरत ऐं वापारी तनज़ीमुनि जे मुतालबे ते टैक्स स्कीम आणे रहिया आहियूं. स्कीम सालियाने 20 करोड़ खां घटि सेल रखंदड़नि दुकानदारनि ते लागू थींदी. IMF ने माली साल जी बजट में स्टेशनरी ते सेल्स टैक्स वारी रिहायत ख़तम करण जो मुतालबो करे छॾियो. तालीमी सामान खां वधीक महांगो थियण जो इम्कान. ज़रिए जो चवणु आहे त हुकूमत IMF जे मुतालबे ते स्टेशनरी सेल्स टैक्स लॻाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे. 1 जुलाई खां स्टेशनरी ते 1.5 करोड़ टैक्स लॻण जो इम्कान आहे. वफ़ाक़ी हुकूमत नए माली साल जी बजट 10 जून ते पेश करण जो फ़ैसिलो कयो आहे. पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब विच में केतिरा ई अहम मुआदा तय थी विया. कराची हैदराबाद मोटरवे जी तामीर, बंदरगाह ऐं मोटरवे जी तरक़ी मुआदनि में शामिल. पाक सऊदी पाक ज्वाइंट बिज़नेस काउंसिल इजलास दौरान मुआदनि ते सहियूं. रियल इस्टेट ऐं मादनियाती शोबनि में तावन वारे मुआदे ते बि सही थियूं. पंजाब खे अहिड़ी तरमीम जो सभ खां वॾो फ़ाइदो थियो. हाणे तरमीम जे दिफ़ा लाइ तयार न आहिनि. अहिड़ी तरमीम जो दिफ़ा न करे सघंदड़नि GB खे कीअं ॾियारे सघंदा. GB में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुटे ज़रदारी चयो त गुज़िर भेरे GB वारनि जे वोट ते धाड़ो लॻो. हिन भेरे ज़्यादती थियण न ॾींदासीं. अवां के फार्म 45 जो बंदोबस्त करणो आहे। सिंध वांगुरु ज़मीन जा मालिक ऐं हक ऐं सिहत जो निज़ाम जीबी खे असां ॾींदासीं। जीबी वारनि खे फैसलो करणो आहे त सिंध नुमाइंदगी केरु करे। खिते में अमन वारनि फील्ड मार्शल जी कोशिशुनि जी कामयाबी लाइ दुआ आहियूं। वफ़ाक़ी हुकूमत जो कराची शहर में मुख़्तलिफ़ मनसूबनि लाइ फंड जारी करण जो फैसलो। कराची जे रस्तनि गेटनि ऐं पाणी जे मनसूबनि लाइ पैसा रखनि था। वफ़ाक़ी बजट जे दस्तावेज़नि मूजिबि कराची जे ग्रीन लाइन बस सर्विस लाइ 1.98 करोड़ रखण जी तजवीज़। ज़िले ओलह जे मनसूबनि लाइ 24 करोड़। नाज़िमाबाद ऐं लियाकताबाद मनसूबे लाइ 37 करोड़ रखण जी तजवीज़। लांडी ज़मान ऐं कुरंगी टाउन जे मनसूबनि लाइ 35 करोड़ रखिया वेंदा। कुरंगी ऐं मलीर जे मनसूबनि लाइ 5 करोड़ रखण जी तजवीज़ बजट में शामिल। कराची में जना मेडिकल कॉम्पलेक्स ऐं रिसर्च सेंटर जे क़याम लाइ बि 40 करोड़ रखण जी तजवीज़। नेशनल रिसर्चर ऐंड फिज़िबिलिटी केयर लाइ बि 39 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। कराची में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग जे क़याम लाइ बि 5 करोड़।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: एक और संगे मील उबूर। इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन हैं, बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल हैं। अनथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
6: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

बाजार का बाज करी तू मुझी तो भैं शाल मनी तू बाजार का बाज करी तू मुझी तो भैं शाल मनी तू अंदर वारो सजदो तोखे मालिक साईं बचाइज मुखे करम करण जी नजर धरी तू मुझी तो भैं शाल मनी तू मुला जीअं मस्जिद में आहीं या पंहिंजे तू फकीर में आहीं तो हर दिल में पाण वसी तू मुझी तो भैं शाल मनी तू तू मज़लूम जो वाह वसीलो तो बिन कोने कोई हीलो आ महजूर जो पाण पिरी तू मुझी तो भैं शाल मनी तू बाजार का बाज करी तू मुझी तो भैं शाल मनी तू।

लिसनर्स कीअं आहियो? तव्हां ऐं उमीद तव्हां ठीक हूंदो, खु़शि हूंदो ऐं आबाद हूंदो ऐं दुआ आहे त अलाह साईं असांजे हिन प्रोग्राम में बरकत था फरमाए, उन खे इल्म भलाई ऐं कामयाबी जो ज़रियो बणाए, असां सभिनी खे सची ॻाल्हि ॿुधण जी, समझण जी, उन ते अमल करण जी तौफ़ीक था फरमाए, असांजी महिनतनि खे क़बूल फरमाए ऐं हिन गॾिजाणी खे खेर ऐं भलाई सां मुकमल फरमाए ऐं असांजे बच्चनि खे, औलादनि खे ऐं घर वारनि खे ईमान ऐं मोहबत ऐं खु़शहाल वारी ज़िंदगी था फरमाए। आमीन। प्रोग्राम रोशन सुबह में शामिल थियण जो तमामु घणो आसानी सवलो तरीक़ो आहे, ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदे हलां थी, नोट कयो। पंहिंजो मोबाइल खणो, राइट मिस ऑप्शन में वञो, एमआर लिखो, स्पेस ॾियो, कंहिं बि सॉन्ग जी फरमाइश कयो या कंहिंजे नालो डेडिकेट कयो, पंहिंजे घोट या पंहिंजे शहर जो नालो लिखी प्लेटफॉर्म ते सेंड कयो, यानी 88 ते मोकिलियो।

0: फिनिश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो व्हाइट एश ब्यूटी सोप। व्हाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जी ए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज उठंदा
2: सिज उभरण खां अॻ ई रोज़ी रसाए थो, सिज उभरण खां अॻ ई रोज़ी रसाए थो, पंहिंजी कुदरत सां ई जग हलाए थो। पखी पखण खे ॾिए दाणो पाणी, डुख सुख में सभ कंहिं सां आहे साणी, रब कंहिंखे कोन रंजाए थो। सवाली जे करे सवाल थो पूरो, कंहिंखे छॾींदो नाहे अधूरो, सालनि जा ग़म सेकंड में थो लाहे। राज़ पंहिंजे जो राणो आहे, हर हिकु दिलि जो ॼाणो आहे, कंहिंखे रोआरे कंहिंखे रोज़ खिलाए थो। अजीब किसा तुंहिंजा कादिर, कई कंहिंखां खसी थो जल्दी ॾेई, तोबह ज़ारी कंहिंखे जीअरे जलाईं थो। जोखे पाननि ते बि कर्म वॾो आहे, अॼु ताईं रखियो भरम वॾो आहे। जीअं पंहिंजे पाण खे सनाख लिखराईं थो, सिज उभरण खां ई रोज़ी रसाईं थो, पंहिंजी कुदरत सां जग हलाईं थो। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ लिसनर्स खे ऐं दिलि जी गहराई वरी ॿीहर पंहिंजे प्रोग्राम रोशन सुबुह में भली कार चवां थी।

प्रोग्राम रोशन सभा में शामिल थियण जो तमामु घणो ई आसान सवलो तरीक़ो आहे। मां पहिरियों तव्हांखे ॿुधाए चुकी आहियां, वरी आउं तव्हांखे ॿुधाईंदे लाइ नोट कयो। पंहिंजे मोबाइल खणो राइट मैसेज वारे ऑप्शन वञो, एमआर लिखो, स्पेस पियो, कंहिं बि सॉन्ग जी फरमाइश कयो या कंहिंजे नाले डेडिकेट कयो, पंहिंजे घोट या पंहिंजे शहर नालो लिखी 881 ते सेंड कयो, यानी 8881 ते मोकिलियो। सालूं तव्हांजे राबता पर मुंहिंजी आवाज़ में तमामु घणो प्यारो ऐं ख़ूबसूरत ई धमाल आहे। लाल शेह अब्बास कलंदर जी मतिलब शान में अचो त हिन खे गॾु इंजॉय कंदा हलूं था।

वेलकम बैक सामिन, उम्मीद है तव्हांखे ही तमामु घणी प्यारी ऐं ख़ूबसूरत लॻी हूंदी धमाल जो जवाबदा परवीन जी आवाज़ में तमामु घणी ख़ूबसूरत ऐं लाल शहबाज कलंदर जी शान में हुई। त ॾिसण जेको अॼु मुंहिंजो मौज़ू आहे उहो आहे ईमानदारीअ ते। ईमानदारी इंसान जी बहितरीन ख़ूबियुनि मां हिकु आहे। ईमानदार माण्हू हमेशह सच ॻाल्हाईंदो आहे, पंहिंजा फर्ज़ नेकीअ सां ऐं नियत सां अदा कंदो आहे ऐं कंहिं सां बि धोखो न कंदो आहे। ईमानदारी सां इंसान जी इज़त वधंदी आहे, समाज में एतमाद बि पैदा थींदो आहे। असांजे प्यारे नबी सलाह अल वसलम जी ज़िंदगी ईमानदारीअ जी बहितरीन मिसाल आहे। नबूअत खां अॻु बि माण्हू पाण सलाह वसलम खे सादिक ऐं अमीन सॾींदा हुआ, छाकाणि त पाण हर मामले में सचा ऐं ईमानदार हुआ। शागिर्दनि, वापारियुनि, मुलाज़िमनि ऐं हर फर्द लाइ ईमानदारी ज़रूरी आहे। इम्तिहान में नकल करण वारा बि पाण में सही माप ऐं तौर ॾियण में बि हर कम में बि सचाई इख़्तियार करणु ईमानदारी जूं निशानियूं आहिनि। त अॼु असीं अहद कंदासीं त असां पंहिंजी ज़िंदगी जी हर शोबे में ईमानदारी इख़्तियार कंदासीं, जीअं असां हिकु बहितर समाज ऐं तइमीर करे सघूं। ताकी असांखे ॾिसो न, अलाह ताला ॾे बि हलणो आहे। इंसान अगरि सचो हूंदो, ईमानदार हूंदो त असांजी हर कोई इज़त कंदो। जेकॾहिं असां ईमानदार न हूंदासीं ऐं धोखो कंदासीं ऐं पोइ हर कंहिं इंसान जी दिलि सां त लही वेंदासीं न। चओ जो इंसान त न आहिनि ॾिसंदा, लेकिन अलाह ताला त ॾिसंदो आहे न। इंसान जी जेको ज़मीर आहे उहो त ॾिसंदो आहे, नियत त ॾिसंदी आहे। इन लाइ असांखे ईमानदारी सां, सचाई सां ऐं अकुल सां ऐं सुठे इख़लाकनि सां रवण सां असांखे हलणु घुर्जे।

ॾिसी न सही हलूं था मैसेजनि तरफ़ जेके असांजे मैसेज पैनल ते मौजूदु आहिनि तन मैसेजनि खे बि असीं पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलंदासीं। अब्दुल रहीम जन असांखे मैसेज कयो आहे, चवनि था अस्सलाम वालेकुम मैडम लैला साहिबा। वालेकुम सलाम अब्दुल रहीम, कीअं आहियो तव्हां? उमेद तव्हां ठीकु हूंदो, ख़ुशि हूंदो ऐं आबाद हूंदो। तव्हांखे आउं पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थी। ऐं अब्दुल रहीम चवनि था त आपका शो तमाम बहितरीन लग रहा है हमको और हम सुन रहे हैं आपका प्रोग्राम। जी मेहरबानी अब्दुल रहीम, मेहरबानी बहुत बहुत, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और उन्होंने फरमाइश की है कि हमें अहमद मुगल के आवाज में सॉन्ग सुनवाएं। दिल ता छड़ियो विसारे अवां, बाबा बेवफा मानू तो दिल ता इलाही छड़ींदा आइन, पो उन्हन के असा किथा याद इंदासी। हाजिर हाजिर अब्दुल रहीम, इंशाल्लाह कोशिश किया थी तवा के तवा जी पसंद जो आऊं जरूर सॉन्ग बुधराइंदम। गोठ आलम खान जरवार का मोहम्मद अजीज जरवार जन असांखे मैसेज कयो आहे ऐं असांजे प्रोग्राम में शामिल आहिनि, असांजे प्रोग्राम ॿुधी रहिया आहिनि। जन फरमाइश कई आहे त असांखे फौजिया परवेज़ जे आवाज़ में तमामु घणो प्यारो ख़ूबसूरत सॉन्ग ॿुधरायो। तव्हां सभु लिसनर्स खे आउं प्रोग्राम रोशन सुबुह में भली कार चवां थी हिकु दफ़ो वरी ॿीहर। विलेज मोहम्मद इब्राहिम खां इब्राहिम संदीलो, मोहम्मद हारून संदीलो भी जन असांजे प्रोग्राम में शामिल आहिनि। मोहम्मद हारून, मोहम्मद इब्राहिम, तव्हांखे आउं पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार चवां थी ऐं कीअं आहियो, कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो न? तबियत सही आहे न? उमेद कयां थी तव्हां सभई लिसनर्स ख़ुशि हूंदो ऐं आबाद हूंदो ऐं असां भेनरनि जूं तव्हां भेनरनि सां हमेशह दुआई हूंदियूं। तव्हां जिते बि हुजो हमेशह ख़ुशि हुजो ऐं अलाह ताला करे तव्हांजे दरनि ते ख़ुशियूं हमेशह झूमंदियूं रहनि। तव्हांजे बचनि खे अलाह ताला हिदायत वारो नेक ऐं साले पैदा करे ऐं तव्हांजे घरनि में ख़ुशियूं अचनि ऐं तव्हांजे घर में जेके ग़म आहिनि से दूर थी वञनि। आमीन। ॾिसंदसि तव्हां ॿुधी रहियो GFM नेटवर्क ऐं उन सां गॾु असां सां ॿियूं टोटल जेकी बि असांजी समरियूं स्टेशन आहिनि उहे बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि।

पकी राय माशूक मेमण मिठल मेमण आसिम मेमण भिरिया सिटी खां जन असां के मैसेज कयो आहे सिटी कोट बहादुर खां चवन था याली मदद पकी राय माशूक मिठल आसिम तव्हां खे आउं पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार चवां थी पाक मोलाली मदद

प्रोग्राम रोशन सुबुह में शामिल थियण जो तमामु घणो आसान ऐं सवलो तरीक़ो आहे। मां पहिरियां तव्हांखे ॿुधाए चुकी हुयमि, हिकु दफ़ो वरी आऊं तव्हांखे ॿुधाए थी हलां थी। नोट कयो, पंहिंजो मोबाइल खणो, राइट मैसेज वारे ऑप्शन में वञो, एमआरओ लिखो, स्पेस ॾियो, कंहिं बि सॉन्ग जी फरमाइश कयो या कंहिंजे नाले डेडिकेट कयो, पंहिंजे घोठ या पंहिंजे शहर जो नालो लिखी 888 ते सेंड कयो, यानी 8881 ते मोकिलियो। त ॾिसंदा साईं हलूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ तव्हां सभिनी ॾिसंदा असां गॾिजी वेंदमि साॻे प्रोग्राम रोशन सुबुह में। तेसीं ताईं ॿुधंदा रहो जी एफ एम नेटवर्क।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: सुनिए GFM। शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक
3: जो आवाज, ओ पिता जा पिता, सिंध जो आवाज, बुदलता रहो।

कॉर्पोरेशन सभा में शामिल थे तमाम घणी आसान सहलो तरीको पेम तक बुधा चुकी हम एक दफो वरी तक बुधाई हल नोट कर पैं मोबाइल खड़ो राइट मैसेज वे ऑप्शन मानो एम आर लिखो स्पेस कैंप समझ फरमाइश कर कहीं डेडिकेट कर पैं घोट या पैं शहर नालो लिखी प्लेटफॉर्म से सेंड कर यानी 8881 से मोकलो अब्दुल रहीम जन अस मैसेज किया सॉन्ग बुधरा अहमद मुगल के आवाज में अवं त दिल त छो विसारे सॉन्ग उन डेडिकेट कन्दी हल अचो तो सॉन्ग के गजी इंजॉय कन्दा हलूँ था।

मुताबिक़ सामिन उम्मीद तव्हां खे सॉन्ग तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो ऐं अब्दुल रहीम जन असांखे फरमाइश कई त ज़ाहिरी अलाह असां हिते वेठा आहियूं त सभिनी लिसनर्स जी फरमाइश ज़रूरु पूरा कंदी हलंदासीं न त सभु लिसनर्स चवंदा असां रखो छा इन लाइ असांजी कोशिश हूंदी आहे त कंहिं बि लिसनर्स खे असीं नाराज़ न कयूं।

في ناس تمام بديرة جي اف ام نتورك ऐसा सागा जी व्यू बीज टोटल जेके असन न्यूज स्टेशन वन से बेस सागा जी मौजूद है प्रोग्राम रोशन सुबह तमाजी खिदमत में पेश के पियो ने मोरो जी लाइव स्टूडियो मा आयो न सागा जी माया तमाजी पेंजी होस्ट आर जे लीला सुमरो प्रोग्राम रोशन सुबह में सब लिसनर्स के आऊं दिल जी केरन से एक वरी भी है पेंजे प्रोग्राम में भलीकार चवाती प्रोग्राम रोशन सुबह में शामिल थन जो तमाम घणो आसान सोलो तरीको मा पेरम तमा के बुधाई चुकी मैं एक तपो वरी आऊं तमा के बुधाई देला थी नोट कयो पेंजे मोबाइल खणो राइट मैसेज वाले ऑप्शन में एमआर लिखो स्पेस दियो पेंजे गोठ या पेंजे शहर नालो लिखी प्लेट वन ते सेंड कयो पेंजे गोठ या पेंशन नाल लिखी तो प्लेट बनते सेंड कयो यानी 8881 ते मोकलियो तलेसिन असि हलो दा न्यूज़ ऐ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तो ब्रेक में तो सब लिसनर्स आऊं गजिनम सागे प्रोग्राम रोशन सुबह में तेसी ते बदन रहो जीएफएम नेटवर्क

ईरानी परडे वजीर अब्बास सिराकची चयो आहे त सुप्रीम लीडर मुशतबा खमनाई ऐं ट्रम्प विच में मुलाक़ात वारियूं ख़बरूं हक़ीक़त पसंद न आहिनि। ट्रम्प हक़ीक़ी दुनिया में न रही रहियो आहे। सऊदी अरब खिते जो वॾो मुल्क ऐं अहम रांदीगर आहे। ईरान ऐं सऊदी अरब गॾिजी खिते में अमन तरक़ी आणे सघनि था। ईरान हमेशा सऊदी अरब सां लाॻापनि खे अहमियत ॾींदो आहे। इसराइल जे 50 जहाज़नि जॾहिं हमिलो कयो त सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई सां गॾु आऊं उते ऑफिस में मौजूद हुयुसि। मूंखे मलबे मां ॿाहिरि कढियो वियो हो। अमरीकी सदर जे चीफ ऑफ स्टाफ सुज़ी वाइल्स पारां उहिदो छॾण जो फ़ैसिलो। बरतानवी मीडिया मूजिबि सुज़ी वाइल्स काबीना में इंतिशार ऐं सदर ट्रम्प पारां तोहीन करण ते तंग थी इस्तीफ़ा ॾियण जो फ़ैसिलो कयो।

सिर्फ स्टेट स्कीम आने जो ऐलान नाने बारे वजीर मोहम्मद औरंगजेब चाहवत तेरती आसानी चाहे तो स्कीम जरिए 30-40 लाख दुकानदार के टैक्स के दायरे में आंदो वेंदो जो तबको टैक्स न डींदो वो आने ॾيڻ चाहे तो ममलकती वजीर बिलाल अज़र बयानी चयो आहे तो मुशावरत ऐं वापारी तंज़ीम जे मुतालबे ते टैक्स स्कीम आणे रहिया आहियूं। स्कीम सालनि 20 करोड़ खां घटि सेल रखणु दुकाननि ते लागू हूंदी।

0: आप सुन रहे थे जीए आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है 91.6।
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सुठो वक्त गुजारियो ऐं तमामु घणा सुठा मतिलब माण्हू आहिनि जिन असांखे मैसेज कयो आहे। चवंदा त उमीद है आप ठीक होगी और खुश होगी और हमें अरे आपको दुआ है कि आप बैंक के बाद भी इतनी तरक्की कर गई और हमें बहुत खुशी हुई है। जी मेहरबानी सर, मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कंदो तमाम जिते बि हूंदो खुश हूंदो या आबाद हूंदो, अल्लाह ताला तव्हांखे बि तरक्की ॾींदो। जन फरमाइश खे यादि आहे असांखे कंहिं बि मतिलब जेको सिंगर जी सॉन्ग ॿुधरायो ऐं मतिलब उन्हनि डेडिकेट कयो आहे सर वज़ीर अली खे ऐं मूंखे। डेडिकेट आपको और सर वज़ीर को। जी मेहरबानी सर आफ़ताब, तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी जो तव्हां असांजे प्रोग्राम खे ॿुधो पियो ऐं असांजे प्रोग्राम खे लाइक पिया कयो, तमामु घणी तव्हांजी महिरबानी। विलेज हाजी अब्दुल गफूर बुगियो खां जन मैसेज आयो आहे मंज़ूर अहमद बुगियो जो। जन चवंदा अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम सलाम अब्दुल गफूर, कीअं आहियो भाउ? उमीद तव्हां ठीक हूंदो ऐं खु़शि हूंदो ऐं तव्हांखे ऐं पंहिंजो प्रोग्राम रोशन सुबुह में मरीकार चवां थी। जन असांखे फरमाइश कई आहे त हमें मुमताज़ लाशेरी का सॉन्ग सुनवाओ। जी जी इनशाला कोशिश कयां थी, जेकॾहिं असांजी लाइब्रेरी में मौजूद हूंदो मुमताज़ लाशेरी जो सॉन्ग त ज़रूर तव्हांखे ॿुधाईंदमि। एरिकेशन रोड खां मोरो खां असांखे मैसेज कयो आहे फ़क़ीर रियाज़ कीरियो ऐं शोना कीरियो। जन चवनि था अस्सलाम वालेकुम भाजी। जी वालेकुम सलाम, कीअं आहियो रियाज़ ऐं शोना? तव्हां बि जिन खे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थी। जन फरमाइश कई आहियां में सॉन्ग सुनवाओ दिल वरी प्यार में फाथी आहे। दिल त घड़ी घड़ी वासंदी आहे बाबा, उहा किथां मणंदी? दिल त सफ़ा नंढड़ी शइ आहे, उहा त ॿार वांगुरु हूंदी आहे, कहिड़ी ख़बर त सही आहे ग़लति आहे। जन चवंदा त फ़ैज़ा अली का हमें सॉन्ग सुनवाओ और डेडिकेट हम करते हमीदा, अच्छा हमदान को।

0: खूबसूरती जो जदीद माइक्रोबीट्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अपरारक भाई बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस पेमेंट रुक जाता आला भी प्रिंट कर सकता जिसमें मिले फ्री चेक बुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
2: सिंधड़ी आमों की सरजमीन
3: सिंध का शहर खास
2: मीरपुर खास
4: अवां चाहियो था अवां जो पैगाम
5: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
6: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज जीए FM की आवाज
5: जीए FM नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: अल्लाह अल्लाह दिल वरी प्यार में फाती आ। उम्मीद तमाम सब लिसनर्स के तमाम घणो प्यारो सॉन्ग लगो होंदो। लिसनर्स तमाम बुधी रहा GFM नेटवर्क प्रोग्राम रोशन शोभा में भलीकार

लगी तो प्यार जे काबिल। उम्मीद क्या दी तमाम सब लिसनर्स के तमाम घणो पसंद आयो नो सॉन्ग। कलेस न सही हलूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरह ब्रेक खां पछि सब लिसनर्स सां गॾु हूंदमि साॻे प्रोग्राम रोशन सुबह में। त तेसीं ताईं ॿुधंदा रहो GFM नेटवर्क।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो
2: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by.
3: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
4: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो. हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो.
6: इन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.

ॾोक सबर मूं मिठा मञणो पियो तुंहिंजी रज़ा खे। हुसन तोखे ॾिनो पाक परवर, विसारींदो न कर रब जी अता खे। हज़ारे ॾोह थींदा माफ़ आहिनि, खणी को दर गुज़र मुंहिंजी खता खे। जोखियो पांधनि चवे न जी हाण ईंदी, न ॾिसंदे दाद मां तुंहिंजी सखा खे। न थी बेदर्द छॾ जोड़ो जफ़ा खे, हली आ हिकु दफ़ो मञ तूं खुदा खे।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अमन मानसो त्याल खराब है, अमन बहाल कराए वने।

कनकोट ऐं बरपासे में उरड़ी ते ज़ाब्तो न अची सघियो। उरड़ी वगे वधीक हिकु ॿ बार फोत विया। टिन वरनि जी इलाही बख़्श ऐं चइनि वरनि जो सोणो लाशाई उरड़ी वगे फोत विया। शहर जो चवण आहे त उरड़ी इलाइक़े में तेज़ी सां पखिड़जी रही आहे। सिहत खातो नोटिस वठी टीमूं मोकिले। कंबर में मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे रहवासियुनि जो बुनियादी सहूलतुनि जी खोट ख़िलाफ़ धरणो। ॻोठ लश्करी चांडियूं ऐं ॻोठ टपाल वासन वगन रोड ते टायर साड़े धरणो हयो। ॻोठाणनि मूजिबि ॻोठनि में के बि बुनियादी सहूलतूं न आहिनि। सरकारी सोलर प्लेटूं ॻोठाणनि किरण बदिरां विकिरो कयूं वयूं। नोटिस वरितो वञे।

सेठा अर्जमा अखबार ॼणियल ॾह क्लास जी शागिर्दानी आसफा मुगल बाज़ियाब न थी सघी। नारिया जी बाज़ियाबी लाइ वारसनि ऐं सियासत समाज धुरनि जो एहतजाज। मुज़ाहिरीन चयो त आसफा खे हुसैनाबाद में 2 फरवरी ते स्कूल वेंदे अगवा कयो वियो। पुलिस नारी खे बाज़ियाब करण में नाकाम थी वई आहे, बाज़ियाब करायो वञे। खैरपुर में गुज़िरियल ॾींहुं ज़हर पी आबगार जी कोशिश कंदड़ नौजवान दम ॾेई छॾियो। नौजवान जावेद चांडियो सिविल अस्पताल खैरपुर में इलाज दौरान दम ॾिनो। वापडा कॉलोनी में नौजवान असां ज़ाल खालदा चांडियो घरू अमृत तां ज़हर पी छॾियो हो। नौजवान जी घरवारी गुज़िरियल ॾींहुं फौत थी वई हुई। टुल में पौरत खे सरियाम क़तल कंदड़ वॾे जो पुट बिलावल सर खे कानून खां ॾाढो। पुलिस चौकीदार अजमल मेमण जे क़तल केस में नामज़द वॾे जो

0: ऐं मिया साहब जो अब्दाल शाह खे गोड अला ॾिठो कुंवारो वटांगवारो फैसल पाणी हेठि आपाशी अमलो न पहुतो कोठण पारां घारो बंदि करण जूं कोशिशूं जारी।
1: सोलर ऐं बैटरी
2: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
2: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: 11:45 AM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क.
1: अभी बुधो प्यार जो आवाज
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: एक्सप्रेस PM, दिस ट्रांजेक्ट इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: न तो समझा पाकिस्तान चीन जे कंट्रोल में आहे, पाकिस्तान भारत में सरहद मसलन के बेहतर नमूने समझौ था। रूसी सदर व्लादिमीर पुटिन चयो आहे त पाकिस्तान वॾो मुल्क आहे जंहिंजा मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां मज़बूत ऐं मुस्तहकम लाॻापा आहिनि। रूस ऐं चीन जा लाॻापा मज़बूत आहिनि।

फैजगंज वेझो गोठ अलाजड़ो शहर में कारे इल्ज़ाम हेठि भाउ हथां भेण क़तल। जवाबदार अली रज़ा शर कुहाड़ी जा वार करे टिन ॿारनि जी माउ सुगरां खे क़तल कयो, जवाबदार फरार। न्यूसदाबाद में क़ौमी शाहराह जे होटल तां लाश हथ, पुलिस मूजिबि लाश जी सुञाणप कराची वासी इरफान पठाण जे नाले सां थी आहे। पोती गाॾनि जो मिस्त्री हो। रादण ग्रिड स्टेशन जे चौथे ॾींहं बि बिजली बहाल न थी। रादण थली मोहबत नओं ॻोठ शाह पंज समेत सवे ॻोठनि जी बिजली खां बहिरूम सख़्त गर्मी सबबि रहवासी तकलीफ़ में। मीरपुर माथिलो में बि वकीलनि जो घोटकी ज़िले जे चइनि ॾींहनि खां बंदि थियल बिजली बहाल लाइ एहतजाज, बिजली बहाल करण जो मुतालबो। सखर में बि गुज़िरियल ॿिनि ॾींहनि खां बिजली बंदि सबबि शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में पाणी सरी खोड़ पैदा थी वई। रहवासियुनि जो एहतजाज, बिजली बहाल करे पाणी फराहम करण जो मुतालबो। सिंधड़ी में गरोड़ शाह जे पुछड़ीअ ताईं पाणी न पहुचण ख़िलाफ़ आबादकारनि जो एहतजाज, खिपरो मीरपुर ख़ासि रोड ते धरणो खां पियो। आबादकारनि जो आबादी अमले ते मुंड जे आबादकारनि खे पाणी बेको करण जो इल्ज़ाम। पाणी चोरी रोके गरोड़ शाह जे पुछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। फैज़गंज अदालत में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ उसरी जी आबादगंज दरख़्वास्त ॿुधणी। अदालत ईंदड़ ॿुधणी ते चीफ इंजीनियर ऐं एक्सएन खैरपुर खे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो। एसटीओ ते कावड़ जो इज़हार, टिनि ॾींहनि में पुछड़ीअ ताईं पाणी पहुचाए तस्वीरुनि सां गॾु रिपोर्ट पेश करण जो हुकम। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एसटीपीअ जा एहतजाज, शहीद मेमन खे बाज़ियाब कराए महांगा जो ज़ाब्तो आणण जो मुतालबो। कनकोट, चंबड़, फरिया सिटी, उबाड़ू ऐं ॿियनि शहरनि में एसटीपी पारां एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरनि चयो त सिंध में मुमताज़ जो वेकिरो जारी आहे, अमन अमान जी सूरतहाल बि ख़राब आहे, अमन बहाल करायो वञे। कनकोट ऐं बरपासी मुरड़ी ते ज़ाब्ते वधीक ॿ ॿार फोत, टिनि वरनि जो इलाज बख़्श ऐं चइनि वरनि जो सोनो लाशारी वगैरह। शहरनि चवण त उरड़ी रही आहे, सिहत खां नोटिस वठे टीमूं मोकिले। ॻोठनि जे रहवासियुनि जो बुनियादी सहूलतुनि जी खोट ख़िलाफ़ धरणो। ॻोठ लश्करी चांद रोड ते टायर साॾे धरणो हयो। ॻोठाणनि मूजिब ॻोठ में के बि सरकारी सोलर प्लेटूं ॻोठण वेको थियूं, नोटिस वरितो। सेठा चमा अगवा ॼणियल ॾहें क्लास जी शागिर्दियाणी आसफा मोकिल बाज़ियाब न थी सघी। नारी जे बाज़ियाबी लाइ वासन सियासत में आज मुज़ाहिरनि चयो त आसफा खे हुसैनाबाद मक़बूल वेंदे अगवा कयो वियो। पुलिस थी वई आहे।

0: थुल में पोरत के सरियाम कतल करने बड़े जो पुट बिलावल सर की कानून का डाठ हो पुलिस चौकी रजमल मेमून के कतल केस में नामजद बड़े जो पुट हफ्ता गुजरण बावजूद गिरफ्तार केस के लुड़ण जो तैयारियों कर छियं बास मकसूल के वासन से ठहन लाय दबाव विझण लगो मुख्तार शाह के गोठाला डितो फुहारो वटा घारो फसल पानी हेठ आपाशी अमलो न पहुतो गोठान परा घारो बंद करण की कोशिशों जारी
1: सन क्रॉप ग्रुप आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6 91.6

दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: टिन लहर GFM 88
1: इस फोन के कैमरे का चल ये तो देखो
2: एक और नया सूट ये किस सहेली ने दिया
3: एक्सक्यूज मी मेरी तरफ से

0: जमाना नहीं बदला, बेटियों के बारे में लोग अब भी वही रवायती जहन रखते हैं।
1: हम बेटी हैं, कोई गले का फंदा थोड़ी है।
2: तुम एक खोखली औरत हो, मर्दों से दिल लगी करने वाली।
0: अगर मेरे बेटे को ये ना मिले ना तो वो पागल हो जाएगा।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
2: Hemmé Diamond Glow Bleach Cream.

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GH नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
4: Bankal Habib, रिश्ता भरोसे का।

टैक्स न डींदो उहो हाणे ॾियण चाहे थो। ममलकती वज़ीर बिलाल असर ख़ियानी चयो त मुशावरत ऐं वापारी तंज़ीमुनि जे मुतालबे ते टैक्स स्कीम आणे

अहमदाबाद में कौमी शाहरा के होटल तां लाश हथ पुलिस मूजिब लाश की सुणप कराची वासी इरफान पठान नाल थी है। गाड़ियों जो मिस्त्री हो

राधन ग्रिड स्टेशन जे चौथे डींहं बि बिजली बहाल न थी सघी। राथण, थरली, मोहब्बत, नौगोट, शाहपंजू समेत ॿियनि ॻोठनि जी बिजली खां महरूम। सख़्त गर्मी सबबि रहवासी परेशान। मीरपुर माथेरो मां बि वकीलनि जो घोट खीचले जे चइनि ॾींहनि खां बंदि थियल बिजली जी बहाली लाइ एहतजाज। बिजली बहाल करण जो मुतालबो। सखर में बि गुज़िरियल ॿिनि ॾींहनि खां बिजली बंदि सबबि शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में पाणी जी शदीद खोट। रहवासियुनि जो एहतजाज। बिजली बहाल करे पाणी फराहम करण जो मुतालबो।

सिंधड़ी में गरोड़ शाख के पुछड़ ताई पानी न पहुंचने जो एहतजाज खेपड़ो मीरपुर खास रोड से धरणो बहायो पो आबादगर जो आपाशी हमले से मुंड के आबादगर के पानी बेको करण जो इल्जाम पानी चोरी रोके गरोड़ शाख के पुछड़ ताई पानी पहुंचाने जो मुतालबो

फैज़गंज अदालत में पानी की खोड़ खिलाफ़ फुसले के आबाद दरख्वास्त बुधणी अदालत इंदड़ बुधणी से चीफ इंजीनियर एक्सीन खैरपुर के जाती हैसियत में तलब करे वरतो। एसडीओ के कावड़ जो इजाद टिन दिन में पुछड़ी अज तई पानी पहुंचाए तस्वीरों से गर्ज रिपोर्ट पेश करण जो हुक्म। सिंध के मुख्तलिफ शहर में एसटीपी जा एहतजाज शहीद वेमन के बाजियाब कराए महंगाई के जब्तों आने जो मुतालबो। कंदकोट चंबर फया सिटी वाड़ो ए बिन शहर में एसटीपी पारा एहतजाज किया वो मुजाहन सिंध में मंजा जो विक्रो जारी है। अमन मान सूरत हाल भी खराब है, अमन बहाल कराया वे।

0: कनकोट ऐं बरपासे में उरड़ी ते ज़ाब्तो न अची सघियो। उरड़ी वगे वधीक हिकु ॿ ॿार फोत थी विया। टिन वरनि जी इलाही बख़्श ऐं चइनि वरनि जो सोणो लाशाई उरड़ी वगे फोत थी विया। शहरनि जो चवण आहे त उरड़ी इलाइक़े में तेज़ी सां पखिड़जी रही आहे। सिहत खां तो नोटिस वठी टीमूं मोकिले।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: इस फोन के कैमरे का तो रिजल्ट कितना अच्छा है, ये तो देखो।
1: एक और नया सूट, ये किस सहेली ने दिए आप?
2: एक्सक्यूज मी, मेरी तरफ से गिफ्ट।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अब तक अवेलेबल हो चुके हैं या फिर नहीं, और आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं, जेस ताईं तव्हां ते डंडू न खणबो न तेस ताईं तव्हां कोन ॿुधाईंदा। इहा ॻाल्हि मां तव्हां में नोटिस कई आहे, अगरि तव्हां ते सख़्ती न कबी न पोइ तव्हां वाकई तव्हांखे छूट मिली वेंदी आहे। ईअं न कयो बाबा, ईअं न कयो। ऐं जल्दी हमें अवेलेबल करायो, उतां वञी इज़ीली तव्हां परचेस कयो ऐं पोइ सुणा थी वञो। सो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी डीएसएन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि, ॿिन्ही प्रोडक्ट्स में तव्हांजी ख़ूबसूरती लिखी के तलाश कयो ऐं पंहिंजी ख़ूबसूरती जेका आहे न उहा वठी अचो, सही आहे। ऐं उनखां अलावा पोस्ट खे लाइक शेयर कंदा हलो था। तव्हांजा मैसेजिस आहिनि जेके असांजे बिल्कुल जी अखियुनि जे साम्हूं आहिनि। नज़ीर खोसो भाई में सुन रहे हैं बलोचिस्तान से। नज़ीर भाई आपका वेलकम करते हैं, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। अली अकबर ब्रोही भाई में सुन रहे हैं सकरण से, आपको शो पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। और कहते वेरी नाइस शो है आपका। फोजिया सुमरो तो सुनाइएगा, बिल्कुल जी मैं कोशिश करूंगी। आबिद

बाय, थैंक यू थैंक यू। सखावत अली राज पर हमारे साथ ही, वालेकुम असलाम, खुश आया मां सफ़ा, तव्हां ॿुधायो ठीकु आहियो सफ़ा? ऐं बिल्कुल मां सेरो हलाइण जी कोशिश कंदमि तव्हांजे लाइ। उन खां अलावा मोलाई मुजाहिद बोज़ार हमारे साथ ही, वालेकुम असलाम जी, मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं, मजे में हैं? मोहम्मद जमान हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं, क्या कहते हैं, वेलकम टू व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बाबा थोड़ो सही लगो, व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। और उन खां अलावा चाहता जो हम आपके साथ साथ हैं आप पूरे तीन बजे तक चलें जी। मोहम्मद जमान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ पूरे तीन बजे तक मौजूद रहने वाले हैं। अनवर भाई आ चुके हैं, अनवर भाई वालेकुम असलाम, कहते हैं कुछ इंतजार अड़ा हूंदा आहिनि जिनमे शामू न उमरू गुजरी वेंदियूं आहिनि। इहो त तव्हां बिल्कुल सही चयो आहे। और एस एन अरबाणी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम असलाम, ओ माई फेवरेट आर्जे, कैसी आहे मां सफ़ा, मज़े में आहियां, तव्हां ॿुधायो कीअं आहे, ॿियो हाल अहिवाल, टॉपिक जेको पुछो आहे तव्हां खां उन ते तव्हांजो छा जवाब थियण वारो आहे। अॼु मूं तव्हां खां सवाल पुछो आहे त मूंखे तव्हां ॿुधायो, अॼुकल्ह जे दौर में अगरि कोई तव्हां खां उधार घुरंदो आहे तव्हांजो छा रिएक्शन हूंदो आहे, तव्हांजो छा जवाब हूंदो आहे, ऐं तव्हां छा कंदा आहियो? इहो मुंहिंजो खां सवाल पुछो आहे, टॉपिक ते तव्हां लाज़मी ॻाल्हाइजो। उन खां अलावा जेके माण्हू असांखे फेसबुक ते ॿुधनि पिया, पोस्ट खे लाइक शेयर कंदा, हलो बाबा धका मुखी नहीं करने का आराम आराम सा पोस्ट के लाइक शेयर करना हलो, ऐं दोस्तन के मेंशन कयो, उन्हनि खे बि ॿुधायो बाबा मार्केट में व्हाइट एज प्रोडक्ट्स अची विया अथव। व्हाइट एज प्रोडक्ट्स तव्हां जेतिरा इस्तेमाल कंदा न ओतिरो तव्हांजे लाइ फ़ाइदो आहे। ऐं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स जी मूंखे सभ खां भली ॻाल्हि इहा लॻंदी आहे त व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तव्हांजे लाइ हर तरह जा प्रोडक्ट्स मौजूद आहिनि। हर तरह जा प्रोडक्ट्स मुराद इहे त कोई साबुण लॻाईंदो आहे, कोई फेस वॉश लॻाईंदो आहे, कोई ब्यूटी क्रीम लॻाईंदो आहे, कोई फेयरनेस क्रीम लॻाईंदो आहे, कोई एक्नी ट्यूब लॻाईंदो आहे, कोई लोशन लॻाईंदो आहे, हर तरह जा प्रोडक्ट्स तव्हांजे लाइ मौजूद आहिनि। व्हाइट एज ब्यूटी एरिया में अञा ताईं अवेलेबल न आहिनि थिया, इहो त बाबा हेफ आहे, तव्हां ते अञा ताईं अवेलेबल कोन कराया आहिनि। तव्हां जल्दी जल्दी पंहिंजे एरिया में अवेलेबल करायो, उतां वञी आराम सां वठी अचो। ऐं नंबर आहे जनाब 03-1579-0595, 03-1579-0595, ही नंबर तव्हां लाज़मी डायल कयो, नंबर ते कॉल कयो, मैसेज कयो, उन्हनि खे ॿुधायो त बाबा असां पंहिंजे ॻोठ में, पंहिंजे सिटी में अवेलेबल चाहियूं था व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट, जे तव्हां आराम सां वञी वठी अचो, ईज़ीली तव्हांजे लाइ आसानी हुजे। सो वञो बाबा इस्तेमाल कयो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो, ऐं सोणा सोणा थी वञो। सो प्रोग्राम आहे व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड आहे जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तव्हां लॻायो पिया, सोणा थियो पिया, ख़ूबसूरती तव्हां सां गॾु गॾु हूंदी जॾहिं तव्हां इस्तेमाल कंदा, ठीक आहे न? सो इस्तेमाल कयो, टाइम थियो आहे हिते शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ जल्दी वापसी तव्हांजी मोटींदासीं, तव्हां करे न वञो, हिते ई वेठा हुजो। टॉपिक जो जवाब ॾियो, पोस्ट खे लाइक शेयर कयो, मां उहो हीअं वञी उहो हीअं मोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: Ab aapki khubsurti ka fan. White Age Beauty Cream.

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GFM 91.6।

बढ़ाता रहे और हमारी खूबसूरती को हमेशा जो है ना वो महफूज भी रखे। तो बिल्कुल इसमें आप लोगों के लिए शामिल है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो जनाब बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए, वहां से मालूमात लीजिए, न मिलने की सूरत में डायल कीजिए 0315799 0595। ये नंबर तुम्हारे लिए आसानी के लिए है, जी तुम परेशान न थो, तुम्हें यो न लगे तो असा किथा वीन्दी केर असो आ मालूम दीद इन का अलग जो भी मालूम तक खपे सो तुम इन नंबर से रातों कर सो कॉल कर या फिर नंडो मैसेज कर दसो तो बाबा तुम किथा कड़े गोठ का कड़ी सिटी का तुम बुधा है प्रोग्राम तुम चाहो था तो तुम्हारे एरिया में तुम्हारे करीबी जनरल स्टोर से ही व्हाइट एज का प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जन घुर्जन। तो व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स जी अगर असा तरफ अचू थोड़ो बुधाई हलूँ तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तुम्हारे लिए प्रोडक्ट्स आन उन्हें सब का पैर अगर मैं जिक्र क्या तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कदम बिल्कुल जी। सो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम तुम्हारे लिए मौजूद है, व्हाइट एज लवली क्रीम तुम्हारे लिए मौजूद है। ही क्रीमों हाँ इन बिन्हीं में फर्क छा है तो फर्क ही है जो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम है या नाइट क्रीम है।

सघंदा ही वाइट एयर जा प्रोडक्ट्स जो त ही ऑल स्किन टाइप जे लाइ तयार कया विया आहिनि। ऐं सभ खां मज़े जी ॻाल्हि त ही नेचुरल अज़ा सां तयार थियल आहिनि, हिन जे अंदर कोई बि केमिकल एड नाहे कयो वियो। सो वाइट एज ब्यूटी क्रीम जी अगरि ॻाल्हि कई वञे त वाइट एज ब्यूटी क्रीम में तव्हांखे एवोकाडो, एलोवेरा ऐं मिल्क मिले थो। ही सभु चीज़ू मिली करे तव्हांजे लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम तयार कई आहे। वाइट एज ब्यूटी क्रीम जेका तव्हांजी स्किन खे फ्रेश बणाईंदी, फेयर बणाईंदी, ग्लोइंग बणाईंदी ऐं तव्हांजी स्किन ते जेके बि निशान आहिनि, दाग आहिनि, अखियुनि जा हल्का आहिनि, उहे सभु चीज़ू बि ख़तम थी वेंदियूं ऐं तव्हांजी स्किन सभु ग्लो करण लॻंदी ऐं तव्हां गोरा गोरा बि थी वेंदा। मर्द मायूं सभी लॻाईंदा ऐं पंहिंजी ख़ूबसूरती खे अञा वधीक ख़ूबसूरत बणाईंदा। ऐं राति जे टाइम तव्हां वाइट एज ब्यूटी क्रीम बि लॻाए सघो था। बाक़ी अगरि असां वाइट एज लवली क्रीम जी ॻाल्हि कयूं था त जनाब वाइट एज लवली क्रीम जेका आहे ही जनाब फेयरनेस फार्मूलो आहे। फेयरनेस फार्मूले सां मुराद ही त ही जेका आहे न तव्हांजी ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहे। मर्द मायूं सभु लॻाईंदा, हर उमिरि में तव्हां लॻाए सघो था, ॿारनि खे बि यूस कराए सघो था, तव्हां पाण बि यूस कयो। ऐं वाइट एज लवली क्रीम जेका रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन सां तयार थियल आहे, जे अंदर 30 वाइटमिन जा कैप्सूल एड आहिनि, जंहिंमें B3 आहे, वाइटमिन ई आहे, वाइटमिन सी आहे, वाइटमिन डी आहे। ऐं ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि त सनस्क्रीन बि एड थियल अथसि हिन में। बिल्कुल जी, अगरि तव्हां इहो सोचो था असां फेयरनेस क्रीम अलॻि सां लॻायूं, सनस्क्रीम अलॻि सां लॻायूं, त बबन न, वाइट एज लवली क्रीम जे अंदर तव्हांखे सनस्क्रीम बि मिले थी, तव्हांजी ख़ूबसूरती बि तव्हांखे मिलंदी ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती जी हिफ़ाज़त बि थींदी। अगरि अहिड़ी गर्मी में, अहिड़ी अज़ाब जहिड़ी गर्मी में अगरि तव्हां चाहियो था त तव्हांजे लाइ कोई अहिड़ो प्रोडक्ट मौजूदु हुजे जेको तव्हांजी स्किन जी हिफ़ाज़त करे, त बिल्कुल वाइट एज लवली क्रीम हिकु नंबर अथव। वाइट एज लवली क्रीम तव्हां लाज़मी नालो वठी परचेज कयो। तव्हां कोई बि कमु कयो था, तव्हां पढ़णु वञो था, तव्हां पढ़ाइण वञो था, तव्हां कंहिं ऑफिस में कमु कयो था, तव्हां कोई बि कम कयो था, या इनफैक्ट तव्हां हाउस वाइफ आहियो, तव्हां घर में हूंदियूं आहियो ख़ासि करे ख़वातीन, त तव्हां बि बाबा ईअं सफ़ा वाइट एज लवली क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था। डेली बेसिस ते लॻायो, तव्हां ॾींहं जो लॻायो, राति जो लॻायो, बसि तव्हां लॻाईंदा जॾहिं वाइट एज लवली क्रीम त तव्हांखे पाण अंदाज़ो लॻी वेंदो त वाकई बाबा प्रोडक्ट जेको आहे हू ॾाढो कम जो प्रोडक्ट आहे। सो तव्हांखे मेकअप जी बि नीड न पवंदी, तव्हांजी स्किन ग्लो कंदी, तव्हांजी स्किन ख़ूबसूरत थींदी ऐं तव्हांजी स्किन में जेको रिज़ल्ट तव्हां वाकई वाज़े ॾिसंदा। सो लाज़मी तव्हां ट्राए करे ॾिसो वाइट एज लवली क्रीम। उन खां अलावा जेको आहे सभु वाइट एज वारनि जा प्रोडक्ट आहिनि तव्हांजे हर जॻह ते अवेलेबल कराइण, इहो मुंहिंजो हिकिड़ो ख़्वाब आहे। सो तव्हां अवेलेबल कराए हुन लाइ तव्हां थोरी मुंहिंजी हेल्प कंदा, तव्हां नंबर जेको ॿुधाए पियो हुन नंबर ते तव्हां राबितो कंदा कयो, नंबर ते राबितो करे तव्हां हुननि खे ॿुधायो त तव्हां किथां जेको आहियो ऐं तव्हां किथे आहियो, किथां रहंदा आहियो, कहिड़ो ॻोठु आहे, कहिड़ो शहर आहे, उते अवेलेबल आहिनि नाहिनि थिया, त ही नंबर तव्हां राबितो करे हिन नंबर ते तव्हां अवेलेबल कराए सघो था। सो नंबर आहे 03-15-799-0595। ओके जी, सो नंबर तव्हांखे सिंधी में बि ॿुधायां थी, जेके माण्हू असांजा अहिड़ा भाइर हूंदा आहिनि, भेनर हूंदा आहिनि, जंहिंखे चवंदा आहिनि त बाबा असांखे सिंधी में बि नंबर शेयर कयो। सो सिंधी में तव्हांखे नंबर ॿुधायां थी, नंबर आहे 03-15-79-595। बिल्कुल जी, ॾाढो सवलो नंबर आहे, ॾाढो ख़ूबसूरत नंबर आहे, हिन नंबर ते तव्हां राबितो कयो ऐं राबते करण खां पोइ तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए सघो था। हिननि खां मज़ीद तव्हां मालूमात बि वठी सघो था त असां किथां वञी वठी अचूं या फिर प्राइस छा आहे प्रोडक्ट जी, कहिड़ो बि प्रोडक्ट तव्हां लॻाइण चाहियो था, अलॻि अलॻि मुख़्तलिफ़ प्राइज़िस आहिनि, त तव्हां उहो बि हिननि खां मालूमात वठी सघो था। सो ही तमामु प्रोडक्ट्स आहिनि जेके तव्हांजी ख़ूबसूरती जे लाइ आहिनि। यकीन जाने आप बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप ट्राई करके देखिएगा। भाईरी वारी सलाह जावां थी, आई मीन भेण वारी सलाह जावां थी। सो जनाब प्रोग्राम आहे वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड कयो वञे पियो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे दावन सां। सिद्रा तव्हां सां गॾु आहे, मूं सां गॾु केरु आहे मूंखे ॿुधाईंदा हलो था। ऐं हा, सवाल जो मूं तव्हांखां पुछो आहे, अगरि अॼु जे टाइम में तव्हांखां कोई उधारी घुरे थो त तव्हांजो छा जवाबु आहे, तव्हांजो छा रिएक्शन आहे, छा कंदा आहियो तव्हां?

सब कुछ मिलियो हिते बियो छा खपे मोहब्बत मिली नफरत मिली बियो छा खपे हकीकत ओके सो तमा हाने वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो जी तमा जे खूबसूरती तमा के मिले समझो दा अच्छा पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हेलो सैया ये ताजे मोहब्बत होंदी आए और मोलाई मुजाहिद दोस्तदार कहते हैं सिद्धरो जी एक खामोश लिसनर है जो डेली खामोशी से आपका शो सुनता है आपको सलाम बोल रहा है लाहुती साजन चांडियो लाहुती साजन चांडियो ख्याल अव खुश आयो एडा खामोशी से प्रोग्राम न बुधंदा कर बाबा कदे कदे हुजन जो सबूत भी दींदा कर।

अनवर भाई कहते हैं असाजे मुआशरे में अजकल केतरा ही अड़ा मानू मौजूद आन जी बन कन्न का बुधंदा आन बन के अखिन में डिसंदा एग्जैक्टली चरिया मानू बाबा तांके पांचा कन पांजू अखियो ला सई छाजला देनी होन यूज कयो उनन जो एसनार बानी मर्सद मौजूद है वालेकुम अस्सलाम एसन छाला तव खुश आयो नी। अच्छा हिदायतुल्लाह कहते वैसे तो पूछ रही हो कि कहां से सुन रहे हैं तो मैं बताऊं बदीन से आप को सुन रहा हूं अब खुश हां जी बिल्कुल खुश बहुत खुश और ऐसे ही सुनते रहिए जी और साथ साथ पोस्ट को लाइक और शेयर भी करती रहिए जनाब। आदिल हुसैन हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक ठाक आप बताएं कैसे हैं। आपने शायरी भेजी है लिखते हैं रूहे मन लोग मुझे तो अकेले ही हिसाब देना है और सब उसके पास कयामत के दिन अकेले हाजिर होंगे। यस

मिस सैफ जान खोसू हमारे साथ मौजूद है। हाय हेलो, मैं ठीक, आप बताएं कैसे हैं? कहते हैं नाइस होस्टिंग, अमेजिंग म्यूजिक, वंडरफुल, एक्सीलेंट। कसम से इट्स सैफ जान खोसू फ्रॉम कश्मीर अदी। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच प्यारे भाई, आप हमारे साथ मौजूद है, वेलकम। और हजार भाई कहते हैं असा खान जी को उधार घुरंदा हुंदा आहन त दई छडबा आहन, न हुंदा आहन त सिधो जवाब दींदा आहियूं। सिधो जवाब ॾियण लाइ बि हिमत खपे थी, जेका मूंखे लॻंदो कुझु माण्हुनि में हूंदी आहे। और प्रिंस सैफ जान कहते हैं कि अदी वाइट एश मुझे, हाँ हाँ, वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप परचेज कर सकते हैं, कश्मीर में भी आप अवेलेबल कराइए, नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए जो है 03 15 799 0595।

ॾियण में बि थोरो लहराईंदा आहियूं त असां हाणे अॻिले माण्हू खे कीअं जवाबु ॾियो. कुझु माण्हू त वरी ईअं हूंदा आहिनि जेके जवाब ई न ॾेई सघंदा आहिनि. चलो तव्हां ॿुधायो तव्हां छा कंदा आहियो. और हिदायत अला केतिरी टॉपिक

उधार तो मैं दे देता हूँ, बस वापस मांगने पर शकी होता हूँ। ये बात बिल्कुल, ये बात मौलाई मुजाहिद बोजार कहते हैं आता हूँ। और पहले बोलते हैं अभी, अच्छा पहले बोलते ना अभी अभी मैंने फलां बंदे को दे दिए पैसे।

प्रोग्राम व्हाइट ईश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट ईश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाई डालो सुना दी डालो ऐसे किशोर भाई कहते हैं कि टॉपिक अगर मुखा के उधार घुरंदो आज चवंदो आहा पेरिन तू दे पो आ डबल करी दींदा सा हुन विचार वट हुजे हां तो तांगा छो घुरे हां समझो जा चले

अलो चाचा खालिद कहते अस्सलाम वालेकुम, खूबसूरती त इंसान जे अंदर में हुंदी आ, बाकी वाइटिश लवली क्रीम त ज़ाहिरी खूबसूरत दींदी आ, त पो ज़ाहिरी खूबसूरती भी हर कंहिं खे खपे थी। बाबा वञो ई वठी अचो, हाणे तव्हांजे चहिरे ते दाणा हुजनि ऐं तव्हांजी स्किन सफ़ाई डल थी वञे त काथे मज़ो ईंदो आहे। सो खूबसूरत बणायो ऐं खूबसूरत रहो, वाइटिश कॉस्मेटिक्स लॻायो। मोहम्मद समान कहते टॉपिक झूठ का सहारा लेते हुए इग्नोर किया जाए क्योंकि आज के दौर में वापसी नामुमकिन है। ओ इहा गाल है। पो वरी पांजे पैसन जे लाए वरी अलग सा समझो था। चलो बाबा दौर अलाए किथे वञी पहुतो आहे। चाचा खालिद कहते मां भी उधार ॾेई छॾींदो आहियां सिदरा, घुरी ना सघंदो। इहो टॉपिक एंसर स्ट्रेंज बट ट्रू। यस एसन कहते टॉपिक जंहिं माण्हूअ में उमेद हूंदी आहे त ही असांखे वापसि ॾींदो त उनखे ॾेई छॾींदा आहियूं। हाणे इहा ख़बर कीअं पवे। अच्छा मोलाई मुजाहिद छा थो चओ टॉपिक? अच्छा यानी की तव्हां मतलब सिधो जवाब ॾेई छॾींदा आहियो। बाबा दिलीर आहियो तव्हां, माशाल्लाह। सुठी ॻाल्हि आहे, सुठी ॻाल्हि आहे। और किशोर भाई कहते अदी अगरि तूं हवे त हिकु ॻाल्हि चवां। हा हा चओ चओ। और हिदायतुल्लाह कहते चला जाऊंगा एक दिन तुर्की, बस एक दफ़ा हा हो जाएगा काम। पोस्ट खे लाइक शेयर कंदा हलो। क्या कहते हैं किशोर भाई, हम गरीब लोग हैं साहेब, हमारे पास देने को उल्टे जवाब ही हैं। यह भी सही गल है। अच्छा दर्द दिल वाली को मसला कहती चंदा जानी आप कैसी हैं? आई मिस यू, मिस यू टू। कहाँ थी सखावत? सखावत भाई छा था चो मुझो भाव अब्दुल कदीर क्रीम हणी थकजी पियो आ, असर कोन अथस सेड़ो बुधराए जो हाने जल्दी अलाए कड़ी अदो तवाजो क्रीम हणंदो हूंदो। अदे के चवस तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम लगाए डेसे सही आ।

जनाब बिल्कुल ही तव्हांजी मोहबतूं आहिनि. हुन खां अलावा वाइट एश ब्यूटी क्रीम आहे जनाब जेका तव्हां लॻायो पिया लॻाईंदा हलो ऐं पोस्ट खे लाइक शेयर कंदा हलो. टॉपिक ते ॻाल्हायो ज़रा त अगरि को तव्हां खां अॼु जे टाइम में उधार घुरे थो त तव्हां छा था कयो. हुन खां अलावा हाणे टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो. न्यूज़ ब्रेक वठूं था, हुन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहिनि. वासी तव्हांजी मोटंदी ओ हीअं वञे ओ हीअं मोटंदी. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते जाइए.

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सेठार जमा अखबार जनरल ॾह क्लास जी शागिर्दानी आसफा मुगल बाज़ियाब न थी सघी। नारिया जी बाज़ियाबी लाइ वारसन ऐं सियासत समाज धुरनि जो एहतजाज। मुज़ाहिरीन चयो त आसफा खे हुसैनाबाद में 2 फरवरी ते स्कूल वेंदे अगवा कयो वियो। पुलिस नारी खे बाज़ियाब कराइण में नाकाम थी वई आहे। बाज़ियाब करायो वञे। खैरपुर में गुजरियल ॾींहुं ज़हर पी आबगार जी कोशिश कंदड़ नौजवान दम ॾेई छॾियो। नौजवान जावेद चांडियो सिविल अस्पताल खैरपुर में इलाज दौरान दम ॾिनो। वापदा कॉलोनी में नौजवान असां ज़ाल खालदा चांडियो घर अमृत तां ज़हर पी छॾियो हो। नौजवान जी घरवारी गुज़िरियल ॾींहुं फौत थी वई हुई। पुलिस चौकीदार अजमल मेमण जे क़तल केस में नामज़द वॾे

0: मियाँ साहब वेझो अब्दाल शाह के गोड अला डितो खुहारो वटांगवारो फैसल पानी हेठ आपाशी अमलो न पहुतो कोठण पारा घारो बंद करण जी कोशिशों जारी।
1: सोलर
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
5: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
4: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मीरपुर खास मुतियारी सकरन मेहराब और मातिली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपकी सदराब के साथ मौजूद मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ मौजूद है ये बताते जा रहे हैं। ओके जी, तो हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में। यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। ओके जनाब, सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, ये तमाम तरह प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए तैयार किए गए। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो तमाम तरह लोग जो है वो अच्छे से जान सके, पहचान सके, समझ सके इन तमाम तरह चीजों के बारे में। उसके बाद आप ये समझ लेंगे कौन सा प्रोडक्ट हमारी खूबसूरती के मुताबिक है और कौन सा प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करना है। ज्यादा मरतबा ऐसा होता है कि मैं आप लोगों को जो है ना वो तफसीलन इसलिए ही बता रही होती हूँ ताकि आप लोगों को इन चीजों की नॉलेज हो जाए और आप लोगों को ये पता हो कि भाई ये जो प्रोडक्ट बताए जा रहे हैं तो इनका क्या फायदा है और ये क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने पहले आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो अभी मैं आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए आप लोगों को ये चीजें भी पहले से पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए सिर्फ दो प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो बिल्कुल वैसे ही डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए सिर्फ दो प्रोडक्ट्स हैं, एक डी स्किन फेस वॉश और दूसरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों की खूबसूरती के लिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की क्या ही मैं अब आप लोगों को बात बताऊं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये जनाब एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसी क्रीम है जिसे लगाने के बाद आप ये सोचेंगे कि हम पहले क्यों नहीं लगा रहे थे, पहले हम क्यों नहीं सदरा की बात मान रहे थे, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है जो कि लगाते साथ ही आप लोगों की खूबसूरती ना सिर्फ बढ़ेगी बल्कि आपके चेहरे पर जो है ना वो ताजगी, वो फ्रेशनेस, वो खूबसूरती हमेशा बरकरार रहने वाली है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि विटामिन ई बीट से तैयार की गई है माइक्रो बीट फार्मुलेशन के साथ साथ, और मजे की बात कि जनाब ये जो प्रोडक्ट है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ये सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आप लोगों को बहुत अच्छे वाले रिजल्ट दे रहा है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना आपके जल्द की खूबसूरती की हिफाजत के लिए है और जनाब इसको तैयार इसलिए किया गया है ताकि आपकी जल्द की खूबसूरती जो है ना वो उसकी हिफाजत हो सके। एक मयारी ब्यूटी क्रीम है, ये जल्द को नमी फराहम करती है और चेहरे को नरम, मुलायम और तरोताजा भी रखती है। और जनाब इसके बाकायदा इस्तेमाल से आपकी जल्द जो है उसके अंदर जो बेरोनकी आ जाती है या फिर आपके चेहरा जो है ना वो ऐसा महसूस होता है कि लोग आपसे पूछते हैं कि भाई आपकी स्किन इतनी थकी थकी क्यों लगती है। वो लहजा थका थका तो खैर लोग बर्दाश्त कर लेते, लेकिन स्किन अगर आपकी थकी थकी होना ये फिर बर्दाश्त नहीं होने वाली बात होती। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमेशा खिलते रहें, महकते रहें, फ्रेश फील करें, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपने यूज करना है जनाब डी स्किन फेस वॉश। और डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, इसके अंदर वो तमाम तरह चीजें ऐड की गई हैं जो कि आप लोगों की स्किन को ब्यूटीफुल बनाने वाली हैं। तो अगर आप ही चाहते हैं कि आपके पास कोई अच्छा सा फेस वॉश होना चाहिए, तो जनाब डी स्किन आप फेस वॉश जो है ये यूज कर सकते हैं। ऑल स्किन टाइप के लिए है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, हर कोई इस्तेमाल भी करेगा, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। तो आप लोगों को ये भी मसला नहीं होगा कि भाई हमारी स्किन तो सेंसिटिव है, हम लगा सकते नहीं लगा सकते, बिल्कुल जी लगा सकते हैं। ऑल स्किन टाइप के लिए हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये एक नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे। और डी स्किन फेस वॉश इसे आप दिन में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह में लगाइए, दोपहर में लगाइए, रात में लगाइए, जब दिल करे तब लगाइए, क्योंकि आप लोगों की खूबसूरती अब आपके हाथों में है। तो बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए, वहां से मालूम लीजिए क्या वहां पर अवेलेबल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया, परचेज कीजिए। अगर नहीं मिल रहे तो डायल कीजिए 03 1579 0595।

अच्छा आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताइए कि आजकल के टाइम में अगर आपसे कोई उधार मांगता है तो फिर आप क्या करते हैं, क्या करते हैं बताएं मुझे जल्दी से। और चाचा खालिद कहते हैं मैं भी सोच रहा था। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है कि मैं पहले घंटे में आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ, दूसरे घंटे में आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ, ताकि आप लोगों का जो माइंड है वो डबल माइंडेड ना हो जाए, आप लोग तफसील से सुन सके कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कितने सारे फायदे हैं और डी स्किन के कितने सारे फायदे हैं।

अच्छा पैनल की जाने बातें आपके बहुत सारे आज पैनल पर मैसेजेस जमा हो चुके हैं, तो मैं सोच रही थी कि पैनल की जाने भी आ जाते हैं। और मुझे जो पहला मैसेज मिला है वो मिला है बशीर लगारी गोठ मीर खान लगारी से। वालेकुम असलम सिस्टर, की आयो अमां जो प्रोग्राम लाजवाब आए, अस रोज बुधन आयो मोहब्बतों प्यारे भावन जो। और उसके अलावा हमारे साथी यासीन गुडाड़ो भाई सकरण से कहते हैं अलहमदुल्ला अमां बुधायो की आयो डाढ़ी गर्मी आ सिदरा। हाँ बाबा गर्मी तो वाकई डाढ़ी आए पर अच्छा कहूँ। और मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर है, वालेकुम असलम बाजी, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जबरदस्त सुपर हिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉन्ग सुनाए मास्टर मंजूर का टॉपिक, हाँ बाजी मैं पैसे देता हूँ मगर पैसे वापस नहीं मिलते हैं ये मतलब सबके साथ मसला है। अरे भाई वापस दिया करें, जो लोग पैसे लेते वापस नहीं देते, अगर आप मेरा शो सुन रहे तो भाई पैसे लोगों को वापस कर दिया करें, ॾाढो गुनाह अथव। हाँ इहो तव्हां ट्रस्ट बि माण्हू जो विञाए वियो था, अगरि तव्हां मतिलब टाइम ते पैसा वापसि कंदा त अॻिले माण्हू खे वरी ॾियण में जेको आहे न थोरो थींदो त बाबा ॾेई थो छॾियां, ही वापसि ॾियण में भलो आहे सो वापसि ॾेई छॾींदा कयो, इहा बुरी ॻाल्हि हूंदी अथव। अच्छा ये मौजूदी वालेकुम असलम फहदुल आशारी, आज डुएट सॉन्ग सुनाइएगा। अदा यो गानो मूं बिल्कुल डिठो पर इन गाने में थोड़ो जेको आहे न त मतलब मज़ो न हो, यानी कि प्रोग्राम में हलाइण जहिड़ो गानो न हुयो, सो तव्हां कोशिश कयो को ॿियो गानो ॿुधायो त मां लाज़मी हलाईंदमि, ठीकु आहे। और सूबल अली ख़ासि केली हमारे साथ मौजूद आहे, सूबल अली ख़ासि केली तव्हांखे चऊं था भली करे आया। साइम अमीर हमारे साथ मौजूद आहे, वालेकुम असलम, माशाल्लाह में बिल्कुल ठीक ठाक हो। दीदी मखन जैसी आर जे सिद्रो व्हाइट एज ब्यूटी शो डी स्किन ब्यूटी शो अच्छा है, नहीं एक ही है ना व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो और कहती है चले नी। बहुत शुक्रिया मरीज जाना, आपको वेलकम हो गया। दादा खालिद बिल्कुल तम वेरो पानी सीटी थी, तवाजो गानो रेडी आए। और उनका अलावा छाता जो तवाजी पोस्ट शेयर करे छी आए सो मोहबतू मोहबतू। अरीबा कहती है आपी जान प्लीज प्ले तू मुझो दोस्त नहीं यार वॉइस पे ममताज मोलाई। ओके मां कोशिश कंदमि गानो हलाईंदासीं पर ममताज मोलाई जो ॾाढो भलो गानो मूं लिस्ट में लॻायो हुयो अॼु, मां इहा कोशिश कई आहे मतलब मां थोरा पंहिंजी पसंदि जा गाना तव्हांखे ॿुधायां, सो चुप करे ॿुधो। फा देरी है सऊ देरी फ्रॉम नवाशा कहते सलाम अदी शो तव्हांजो ॾाढो भलो आहे मोहबतू प्यारे भाजू। प्रोडक्ट जेके ॿुधायां थी लॻायो पिया कोन ॿुधायो त सही, ऐं तव्हांजे ॻोठनि में तव्हांजे सिटीज़ में मिलनि था कोन इहो बि ॿुधायो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां इस्तेमाल कई आहे कोन, छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी ख़ूबसूरती जे लाइ ॾाढी भली अथव। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां जॾहिं इस्तेमाल कंदा त तव्हांखे इहो अहसासु थींदो त बाबा असां अमीरनि वारो प्रोडक्ट खणूं था, हक़ीक़त इहा अथव। हीअ जेको आहे न मतिलब हीअ लॻाइण सां तव्हांखे वाइब ईंदी अथई, मतिलब रिचनेस जी तव्हांखे वाइब ईंदी, तव्हांखे फील थींदो त बाबा वाक़ई असां कोई अमीरनि वारो प्रोडक्ट लॻायूं पिया। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां लाज़मी लॻाए ॾिसजो, उन सां गॾु तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश ट्राई करे ॾिसो। ऐं गॾोगॾु डायल कयो 03 15 799 0595।

अच्छा कश्यप हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, बिल्कुल ठीक ठाक है, गुड आफ्टरनून, सॉन्ग सुनाओ। चलिए मैं कोशिश करती हूँ आपका गाना सुनेंगे, ठीक है कश्यप। और बशीर लगारी हमारे साथ है, गोठ मीर खान लगारी, वालेकुम अस्सलाम भाई। चौथा आदि तमाम प्रोग्राम लाजवाब है, असा रोज शौक से बुधन आयो, मोहब्बत हूँ प्यारे भावजू। मकसूद मला हमारे साथ मौजूद है मेहरापुर से, आपका भी बहुत शुक्रिया। कश्यप कहती है सिडो आपका इंतजार कर रही थी, मुझे नींद आ गई, अभी उठी तो आपका शो चल रहा था। नाइस शो, थैंक यू जी, थैंक यू। इंतजार करते करते सो गई और कहती है कि सिद्रा आज आप गाने बड़े धमाकेदार चलाते हो, दिल करता है डांस करना स्टार्ट करते हैं। हाँ ना, मरी मरी गाने पता नहीं कि मुझे अच्छे नहीं लगते। और साइमा मीर कहती है कि मैं सदके आज सुबह सवेरे ही घर में ऐसे टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी और कहती है टाइम अच्छा टॉपिक के ऊपर बात करती है कि होते हैं तो खुशी से दे देती हूँ, फिर वो भी खुद ही दे जाते हैं घर बैठे, नो चिंता। तो अल्लाह ये कहड़ा माण्हू जगह तव्हां खे घर वेठे ॾेई था वञनि, असांखे त अञा तहिड़ा माण्हू कोन।

एशियन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो सुणा सुणा थी वञो ये मौजूद ही हाय मेरी फेवरेट आरजे आप कैसी हैं यकीनन आप खुश होंगी और कह रहे साथ साथ में चले ये भी अच्छी बात है माशाल्लाह मैं किसी काम तो आ रही हूँ। इमरान अली बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच, आपकी बहुत मेहरबानी आप हमारे साथ मौजूद है। और शोनी कहती है आप ही मैं भी आ गई आपके शो में, एक बात पूछूं आप ही नहीं ऐसा तो नहीं है, नॉलेज भी इंसान के लिए जरूरी होती है, बिना नॉलेज के इंसान भी अच्छा नहीं होता, तो आप जो है ना वो कंटिन्यू रखें ठीक है। और ये इमरान भाई कहते हैं बाजी टॉपिक है उधार हम जमानत से देते हैं कोई मसला नहीं, ओके चलिए अच्छी बात है।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network सिंध की आवाज।
3: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GFM की आवाज,
3: GFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: वासाई वा वासाई वा हे तव भलो गानो ए तवा जो भलो भलो प्रोग्राम जो नालो आहे व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो बिल्कुल ही तवा तई पहुंचाए वने पयो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जी तावन सा सो तवा इस्तेमाल कयो पया कौन मके बुधायो पया साची रे प्रोग्राम जी लास्ट लिंक में जिन मानन हाणी हाणी बुधन स्टार्ट कयो जके स्टार्टिंग वटी अस सगर माजो तन सबनी के चोता वेलकम बलिकार तवा जो मोहब्बत उ समातु ए चाहतु आइन बाबा
1: हर पाया तुझी पसंद जो न तकहण मजो के कम जो
0: हां ना हकीकत गाल कर त पोई ठहण कम जो है ना
1: मजो के कम जो
0: न त ठहण वाके केड़े कम जो आई तमाम भी इस्तेमाल कयो बाबा टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आई टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तमाके बुधाईदी आ हां त टी स्किन ब्यूटी क्रीम असा गर तमाके टी स्किन फेस वॉश मिले पयो आई टी स्किन फेस वॉश तमाजी खूबसूरती जे लाए आहे तमा इस्तेमाल कयो पया
1: ठहण मजो के
0: हाँ जी बिल्कुल डी स्किन फेस वॉश तवाजी एरिया में मिले तो नथो मिली तमा पुछा करायो ते मिले तो तमा ठीक है वठी जो नथो मिले तो तमा जेको ना अवेलेबल करायो रातो कयो 03-15-799-0595 इन नंबर ते इनन का पुछो मालूमात वठो किथे किथे अवेलेबल आहे किथे किथे अवेलेबल थेण जरूरी आहे ये गालियों तमा उनन का मालूम कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन फेस वॉश तमा लाजमी वठो ठीक है उन का अलावा जेको आज लास्ट लिंक आहे अच्छा कुछ मान अगर कॉमेंट्स मथे हली वा हुजन जिन न पढ़ा तो समझी वनो ठीक है रियाज अहमद लोहर भाषा से अगर मौजूद आई तुम मोहब्बतू आए दर्द दिल कहते उधार मांगने वाले ऐसी बातें करते हैं देने नहीं होती पर दे देते हैं चले ये भी अच्छी बात है वैसे और अच्छा आदिल भी हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया आदिल आपका यूनिस खोड़ो हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम यूनिस भाई तुम मोहबित प्रोग्राम बुध पाया और एसन कहते हैं असा का उधार घुरंदा भी उहे जेके वापस दींदा आहे एड़ा मानू आइन सही मुखे तो कोन तो लगे और किशोर भाई कहते अदी हु गाल ही आहे तवां जी बिल्कुल या गाल मो बुधी हाणे तवां चोंदा तदी डिस डिस हाणे हवा में न उड जा गाल एड़ी कई तवर भी चो तो हवा में न उड सो ये तवां जो मोहबित आइन वैसे सीरियसली न त वाकई मायने काबिल कोन आहे

बहुत ही प्यारा गाना आप इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड ईस्ट इन ब्यूटी शो। पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। मौलाई मुजाहिद बोजार में सुन रहे हैं टू फॉर चूसल से, आपको वेलकम करते हैं जी। थैंक यू। अनवर भाई कहते हैं टॉपिक अकाउंट में तो पैसे हैं लेकिन मेरा फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा, लगता है गरीबी की वजह से हाथों की लकीरें मिट गई हैं। ऐसा बोल देते हैं, क्या बात है भाई। और कहते हैं टॉपिक अनवर भाई उधारा पैसा नहीं दोस्ती यारी मिट्टी माइटरी सब कुछ बन जा चुका हूँ, उधार नडजे न वठजे वो सब मोहब्बत जा रिश्ता नफरतन में बदल जी वेना। बिल्कुल ही आए गाल, बिल्कुल ही आ गाल। अगर तुम कंखे भी उधार यो था तो तुम यो मतलब जो आ समझी छो तो हाँ उधार देने का तुम्हारी दोस्ती आ तुम्हारी रिश्तेदारी आ मिट्टी माइटी आ उ सब जो तुम विंजाए वेहंदा। शेमू डिठी है।

ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तव्हां इस्तेमालु कयो उधारा पैसा ॾियण बंदि कयो। अच्छा हिकड़ी ॻाल्हि आहे, मतिलब मूंखां कोई पैसा वठंदो आहे न, मतिलब हिकिड़ो ॿुधायां थी ज़ाती तजुर्बो, मूंखां कंहिं पैसा वरिता त पैसा ॾे ज़रूरत में न मथे महीने तव्हांखे ॾींदसि मूं वटि, ठीकु आहे। ऐं मूं चयो ठीकु आहे भला मथे महीने में, मथे महीने जी ॻाल्हि आहे, जल्दी मिली वेंदा। ऐं उन्हनि पैसनि खे 15 महीना थी विया आहिनि मूंखे अञा ताईं कोन मिलिया, समझो था, त ही मथियो महीनो शायदि अञा ताईं कोन आयो आहे। हक़ीक़त अथव, मिटियूं माइटियूं दोस्तियूं सभु जेके न ख़तम थींदियूं जॾहिं तव्हां पैसा उधारा कया।

अच्छा हज़ार खान तव्हां जो गानो सुभाणे हलाईंदासीं, ठीकु आहे? सराइकी गानो तव्हांखे कोई बि भलो ॿुधाए छॾींदासीं। अॼु जेको लिस्ट आहे न उहो फुल थी चुकी आहे। मुंहिंजी तव्हांजे कॉमेंट ते नज़र हाणे पई सफ़ा। आदिल कहते हैं टॉपिक आंसर, हम पैसे नहीं लेते लोगों को पता है। अच्छा, यानी कि आपसे पैसे नहीं लेते। सही सही, हाँ, मतलब इतना तो इंसान खड़ूस होना चाहिए कि अगला इंसान सोचे कैसे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। ओके जी, ओके, बहुत बेहतरीन। और उसके अलावा, अच्छा सच्ची बताएं कि किशोर भाई आपके ख्वाब में आए थे, मतलब वो जो सब आपने बोला वो एम ही था। अच्छा अली महर ओनर भाई क्या कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, तन्हा अली फ्राम नवाबशाह से। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है, आपने लंबी सी शायरी भेज दी है। सो आपको बस मैं यही कहूंगी कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल लाजमी करके देखिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही तो आप डायल कीजिए 03-15-799-0595। तो ये नंबर आपकी आसानी के लिए है, ताकि आप लोग परेशान ना हो जाएं कि हम कहाँ से जाकर परचेज करेंगे, हमारे एरिया में मिल रही है नहीं। अक्सर ऐसा है कि लोग जो है ना वो मुझसे ये भी कहते हैं कि बाजी के साथ गोठ में मिले थी कौन, ऐसा पूछा कौन कराया, पर तव्हां ॿुधायो त मिले थी या न थी मिले। अगर मां तव्हांखे ॿुधाए, इन खां बहितर आहे त हीउ जेको नंबर तव्हांखे ॿुधायो वञे थो प्रोग्राम में, इन नंबर ते तव्हां राबितो कयो, इन्हनि खां मालूमात वठो त किथे किथे अवेलेबल आहे ऐं तव्हां किथां कॉल कया उन्हनि खे, या मालूमात हुजे जीअं हू तव्हांखे गाइड करे सघनि त तव्हां कहिड़े जनरल स्टोर तां कहिड़े दुकान तां वञी वठी सघो था। सो इन नंबर ते राबितो तव्हां लाज़मी कजो, जेको आहे 03-15-799-0595।

0: एडे बैठ गयो होडे बैठ गयो एडे बैठ गयो होडे बैठ गयो
1: दुनिया तो में फेरो।

डोगरी डाडू बोलो गानों हलाये थम दर्दी दिल कहती है शो सुनते सुनते याद आया कि मैसेज तो मैंने किया ही नहीं। चलिए अच्छा किया आपने मैसेज कर दिया, बता दिया करेंगे वाकई आप हमारे साथ मौजूद हैं। वासु भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये जी राहिब अली खोसू हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें कश्मीर से सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच आपको प्रोग्राम।

अच्छा दर्दी दिल कहती तारी गवाह है आज तक जैसे भी मैंने पैसे उधार दिए मुझे मिले नहीं है, मिलने भी नहीं बाबा, मिलने भी नहीं। अच्छा हाला जी खट हाला एक ब्रांड आओ ना जी गाल पे थे ओगरी राहे बात आज मोहब्बत हुआ है बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी कौन कश्मीर में पुछा रख जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाम जे एरिया में नथी मिले तो बाबा पुछा करे नंबर दे रातो जरूर कजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाम इस्तेमाल कयो पया कोन मुखे यो भी बुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जकाए तमाम जे खूबसूरती के सफा चार चंड लगाए छडी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो सोना सोना थी वे।

0: और जी माणू है लखन करोड़न जो अगर वाकई लख करोड़ न खाया तो अच्छा हिदायत अल्लाह वो पैसे मुझे भी लग रहा है कि अब मुझे भूलने चाहिए, वैसे वो पैसे थे बहुत ज्यादा, मैं चाह कर भी नहीं भूल सकती। यो मथियो महीनो लगे तो इंदो ही कोन कडे अया बिल्कुल यहां गाल है हाने उनन जे कोन गाल है बोलन बंद करे जणो मता पैसा घुरन भैया हकीकत तवाला यो जिंदगी जो वडो सबक तव तवा यो सिखी छड्यो त तवा जे कोन कें ते भी यकीन न कजो खास करे पैसन जे मामले में
1: समझी जो तोखे सोना कसम ते आ ए जादूगदानी
0: अमानो लागे थे हकीकत आ मुंजा भी पैसा आए ने एक दोस्त ने 10 साल थी वया ना अन्या त इन जी 15 तारीख वो न थी अजी बिल्कुल ओके जी सो प्रोग्राम आई तवा जो पेंजो व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जी तवा से तवा तई पहुंचायो विंदो आ व्हाइट एश जा प्रोडक्ट्स आइन बाबा डी स्किन जा प्रोडक्ट्स आइन तवा जी खूबसूरती हाने तवा जे हथ में दव ता वनो आई वनी वठी चो अगर तवा जे एरिया में ना है अवेलेबल तो डायल कयो 03 15 799 0509 ऐं उन खां अलावा जेको आहे

सही वाह, बहुत सही वाह। अच्छा जूनो का अलावा सोनी चाहिए थी आप ही। ओके जी, ये वैसे गाना जो मैंने लगाया ये कश्यप ने हमें फरमाइश कर दी थी, तो आतिफ का गाना भाई मैं चलाऊंगी। पता नहीं क्यों आतिफ के गाने चलाने में मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों नहीं लगा पाती मैं। चलेंगे, चलाएंगे आपके लिए गाना, ठीक है सोनी। और ये इमरान भाई कहते हैं बाजे ही वारो गानों तो हलाए जो बाजा सुबाने सुबाने फरमाइश कर जाए, ठीक है। अरिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और माहिन कहती है कैसी हो आप माहिन, मसफा बिलियन दाम बताया कदा जाहिर थे आयो। और कहती है कि उधार की बात कर रही हो, मुझे तो लोग मिस लाई करती हूँ ना, वो भी ठीक तरीके से पैसे नहीं देते। तो मानू एडो हक खाने जा माहिर थी व्यान अल्लाह। तो अजो लगी तो असा प्रोग्राम में डाढ़ी मानू से गिला वैसे ना कि गिलाना चाहिए ये हकीकत है। ओके याकू मंगी भात आवाज मोहब्बत प्रोग्राम बुधो पया। चले तारीफ भी सच्ची थी और ख्वाब भी सच्चा था, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेहताब अली इंटर भात से सेकंड मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। अदा जादा जो इंसान सोनो हुए बो मन जो मेरो न हो ही ना मुमकिन ये भी ना। और राहिब अली खोसो भाई में सुन रहे हैं। अच्छा राहिब भात आज गाना सुबह हलाइंदा हारे सुल्तान तवा की प्रोग्राम आने पो, बहुत शुक्रिया। अनवर भाई कहते मुख्य जोगी हणी दे ढारो उधारा पैसा कदे मिलंदा कदे बिना भावे सारे छोड़ो। मोहम्मद मीरन जखनानी भाई हमें सुन रहे हैं, जेकब आवाज से बहुत शुक्रिया भाई जान। और जी लग रहा है कि अभी आप लोगों से इजाजत ले लें क्योंकि हमारी जाने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। वरी इंशाल्लाह तमाम से मुलाकात जी का थींदी वहा मुझे सुभाने वाले प्रोग्राम में थींदी। बिल्कुल जी, सो खूबसूरती तुम हासिल करी सको था जड़ी तुम इस्तेमाल करना डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो था जिन मानन असा के हाने बुदन स्टार्ट कर दो उनके बताइना हालू तो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम इजीली वठी सको था किथा भी तुम के मिलंदी आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा अगर तुम के डी स्किन फेस वॉश भी वठनो आए डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो अकेली ने

जो फेस वॉश गॾु लाज़मी लॻाइजो. उन खां अलावा अगरि असां वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो ज़िक्र कयूं त वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तव्हांखे मज़ेदार प्रोडक्ट्स मिलनि पिया, जीअं वाइट एज ब्यूटी क्रीम आहे, वाइट एज ब्यूटी सोप आहे, वाइट एज फेस वॉश आहे, वाइट एज जो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आहे एक्नीज जे लाइ, ऐं वाइट एज जी लवली क्रीम आहे जेका फेयरनेस क्रीम आहे. उन खां अलावा अहिड़ा खोड़ सारा प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हां इज़ीली वञी वठी सघो था, इस्तेमाल करे सघो था. इस्तेमाल कयो, सुहिणा सुहिणा थियो, माने खूबसूरती खे निखारियो ऐं सफ़ा ईअं चमकंदा वठो. ठीकु आहे, ऐं हाणे इजाज़त वठूं था वरी न इनशाला तव्हां सां मुलाक़ात मुंहिंजी जेका थींदी उहा सुभाणे वारे प्रोग्राम में थियण वारी आहे 1 बजे खां 3 बजे ताईं. तव्हांजो असांजो साथ हूंदो आहे डेली, बसि जुमो छॾे. असो पापा किथे का ग़लती थी हुजे, को अहिड़ो लफ़्ज़ ॻाल्हायो हुजे जेको तव्हांखे न सुठो लॻो हुजे, त मां माज़रत कयां थी. सो मोकिलाणी नाहे बाबू, सिन सलाम सां सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर.

0: 3
1: मटियारी की आवाज
0: GFM 91.6
2: It's 3 PM. This time check is brought to you by
3: जडेल रखंदिया गाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट कयो वयो।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर
5: न्यूज़। डिवीजन में आबादगार पानी लाइ परेशान, फैज़गंज, चूहड़, जमाली ए बेन शहर में आबादगारन जा एहतजाज, हुकूमत का ज़री पानी की खोट खत्म करने जो मुतालबो। वफाकी हुकूमत पारा सरकारी मुलाज़िमन के पगार में 10-15% तक वाध करने ते गौर, नाणे वारी वज़ारत पगारन में वाध बाबत तजवीज़ों वज़ीर आज़म के मोकिले छॾियूं। ज़रीन ने चवण आहे त नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सरकारी मुलाज़िमन जे पघारनि में 10-15% ताईं वाध करण जी तजवीज़ ॾिनी आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सरकारी मुलाज़िमन जे पघारनि में वाध जो फ़ैसिलो इतिहादनि सां मुशावरत बाद कंदो। अमरीका जा ईरान ते नवा हमला, ईरान जो बि अमरीकी अॾनि ते जवाबी वार। अमरीकी फ़ौज ईरान जे इलाइक़े गोरख ऐं अबेट कशम के मिसाइल ज़रिए निशानो बणायो। अमरीकी सेनका मौजूदु अमरीकी फ़ौज ईरान जे 6 मिसाइल्स खे रोकियो, 7 हदफ़ ताईं पहुचण में नाकाम रहियो। 4 ईरानी ड्रोन्स खे

ईरानी ताक़तवर ऐं गैरतमंद आहिनि, तंहिं करे डील करण में ॾुखियाई पेश अची रही आहे। ईरान वटि मुआदे खां सवाइ ॿियो को बि दॿ नाहे। सदर ट्रंप चयो आहे जंग खे हल थियण में वक़्तु लॻंदो, ही कम जल्दी में नाहिनि थींदा। ईरान वटि सिर्फ़ 21-22% मिज़ाइल बचिया आहिनि। ईरान में असांखे कामयाबियूं मिलियूं आहिनि। आमना हुरबत मां ॿ घणा ऑयल टैंकर गुज़रिया आहिनि। फ़िलहाल अंग ॿुधाइण नथो चाहियां। तेल जूं क़ीमतूं घटिजी वेंदियूं।

डोनाल्ड ट्रंप मंझंद ईरानी कदे डेडलॉक खत्म करे सके तो अमेरिका लाए ईरान असां मुआदे लाए जो बड़ी रकम ना है। ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रज़ाई चाहे तो अमेरिका के ईरान के शर्त कबूल करण से मजबूर किया वो। अली अकबर विलायती चाहे तो ईरान के ताकतवर थो यूरोप जो बवायतो ख्वाब हकीकत में तब्दील थी चुको है। ईरान मजबूत थी रो है ख्याली नक्शा भी तब्दील थी रहा है। जड़ादार अमन लाए बराबरी वाले निजाम की हथी देनी पवी। अमेरिका से गारियन लाए लबनान से सौदेबाजी करनी हो तेहरान जो वाशिंगटन से वायदो भी वे हा। ईरानी परदेही वजीर अब्बास अराग़ची लबनानी सदर के लबनान जो दुश्मन करार डींदे है तो लबनानन के हकीकी दुश्मन का आजपो मारणो पवो। लबनानी सदर जोसेफ ऑन ईरान से लबनान में मुदाखलत करण का इल्ज़ाम लगाया हुआ।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
4: जीए एफएम नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे हकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल गही मारू सुगर खां भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे नकी पड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मलंग ही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: लई सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: आपकी दृष्टि में।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है।
3: आयत नाने वाले वजीर मोहम्मद औरंगजेब, वजीर आजम शहबाज शरीफ सरकारी मुलाजमन के पगारन में 10-15 सैकड़ों तीन बात करने की तजवीज रहनी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ सरकारी मुलाजमन के पगारन में बाद जो फैसलो इतिहादन से मुशावरत बात कर। अमरीका ईरान विच में जारी गालिन में अहम अकबराई वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी अज ईरान के दौरे से तेहरान वेंदो। अरब मीडिया की दावा, अरब मीडिया मौजिब अमरीका ईरान विच में मंजमद असासन की बहाली वाले मामले से अकबराई थी है जो दौरों कर मुहिदे से मुशावरत कर। सदर ट्रंप पारा ईरान से गालियों जो मुद्दों 60 दिन रखना चाहे तो मंजमद असासन की बहाली की शरह से भी गालियों कई वेंद। डोनाल्ड ट्रंप मंजमद असासे ईरानी असासा बहाल कर 1.5 लाख खत्म कर सके तो अमरीका ला ईरान से मुहिदे ला जो

अरब डॉलर का वडी रकम न है। ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार मौसम रज़ाई है तो अमरीका के ईरान जा शर्त कबूल करण ते मजबूर किया वेंदो। अली अकबर विलायती है तो ईरान की ताकत वठण वो यूरोप जो भावायतो ख्वाब हकीकत में तब्दील थी चुको है। ईरान मजबूत थी रो है, ख्याली नक्शा भी तब्दील थी रहा है। जगहदार अमन लाय बराबरी वाले निजाम के हथी रहनी पवी। अमरीका ईरान जा एक भेरों बीहर एक बेत हमला। अमरीकी फौज जा ईरान के इलाके गोरोक बेट कशीम ते हमला। जवाब में ईरान के कोयत बेरीन में अमरीकी अडन से निशानो पायण की दावा। अमरीकी सेनका मूजिब अमरीकी फौज ईरान के छह मिजाइल्स के रोको सतों हदफ ताई पहुंचने में नाकाम रहो। चार ईरानी ड्रोन्स के भी अपना हुरमस में तबाह किया वो। अमरीकी बहरी बेड़े की निशानो पहुंचने वाले ईरानी दावा दुरुस्त ना है। ईरान के पासदान इनकलाब है तो अमरीकी हमलों के जवाब में कोयत बहरीन में अमरीकी अरन के निशानो बणायो है। अमरीकी कार्रवाई जारी रही तो अपने हुरमस के मुकम्मल तौर से बंद किया वो जिनों जिम्मेवार अमरीका होंगे।

हेठि ताईं बेरिन जे ईरानी हमलनि जी मज़म्मत हमला खुदमुख्तियारी जी भञकड़ी करार हमला रोकण ऐं अबन हुरमत खोरण जो मुतालबो बेरिनी परडेही वज़ारत चयो आहे त मिज़ाइल ऐं ड्रोन ज़रिए अमन क़ाइम नथो करे सघिजे नई बारूदी सुरंग विछाए इस्तक़ाम आणे सघिजे थो ईरानी फौरी तौर ते बिना जवाज़ हमलनि जो सिलसिलो बंदि करे अमन जो रस्तो अख़्तियार करे या अकेलो थी वञे बहरीन जे सब्र खे कमज़ोर न समझो वञे बहरीन पंहिंजी सलामती खुदमुख्तियारी दिफ़ा ऐं अवाम जी सलामती ते को बि छा न कंदो कुवैती परडेही वज़ारत चयो आहे त हमला मुल्की खुदमुख्तियारी ख़िलाफ़ आहिनि दुरुस्त करार नथो ॾेई सघिजे कुवैत दिफ़ा तहत क़दम खणण जो हक़ रखे थो।

अमरीका सां ॻाल्हियुनि लाइ लबनान ते सौदेबाज़ी करणी हुजे हा त तेहरान जो वाशिंगटन सां मुआहिदो बि थी वञे हा। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राख़्ची लबनानी सदर खे लबनान जो दुश्मन करार ॾींदे चयो आहे त लबनाननि खे हक़ीक़ी दुश्मन खां आजपो मारणो पवंदो। लबनानी सदर जोज़फ ऑन ईरान ते लबनान में मुदाख़लत करण जा इल्ज़ाम लॻाया हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस हथां गिरफ़्तार खारजी दहशतगर्द उमरदीन उर्फ जज़्बा जो छिटकाईंदड़ इंकशाफ़। खारजी दहशतगर्द उमरदीन उर्फ जज़्बा वीडियो बयान में चयो आहे त 2025 में पीउ सां जहिड़े बाद टीटीपी में शामिल थियसि। खारजी कमांडो सां गॾु 60 खां 70 तरबियत याफ़्ता अगवानी आहिनि। खारजनि खे अफ़गानिस्तान में मौजूद कमांडोज खां माली मदद मिलंदी आहे। कराची में तरक़ियाती कम जारी। शहरनि यूनिवर्सिटी रोड सबब ॾुखियनि खे मुंहुं ॾिनो। यूनिवर्सिटी रोड खे जुलाई जे आख़िर ताईं खोलियो वेंदो। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त कराची पोर्ट सिटी आहे, मोटरवे जी शुरूआति हितां खां थियणु घुर्जे। वफ़ाक सदाई मोटरवेज़ जे मामले ते सिंध खे घटि तरजीह ॾिनी आहे। पूरे मुल्क जी ट्रांसपोर्ट सिंध जे बुनियादी ढांचे खे नुक़सान पहुचाए थी। पूरे मुल्क में मोटरवेज़ ठही विया आहिनि पर सिंध में नाहिनि ठही सघिया।

सिंध में पाणी बहरान संगीन थी वियो। वाणनि समेत बिया पोखियल फसल पाणी न मिलण सबब सुकण लगा। पंजाब जी बहोर बरकरार, तकरारी फिल्ट कैनाल ज़रिए सिंधु दरिया मां पाणी खणत जारी। सिंध में ज़रई पाणी जी खोट 56% ताईं पहुची वई। कोठी बैराज ते 56%, गुडू बैराज ते 30% खोट बरकरार। सखर बैराज ते बि पाणीअ जी शदीद खोट। आबादगार सारेलु जो पोखण लाइ परेशान। गुडू बैराज जो मथां विकिरो 75,000 ऐं हेठां विकिरो 54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज जो मथां विकिरो 50,000 ऐं हेठां विकिरो 18 क्यूसिक थी वियो। कोठी बैराज वटि मथां विकिरो 11,000 क्यूसिक थी वियो। डाउन स्ट्रीम में पाणी छोड़ मुकमल तौर ते बंदि कयो वियो।

कोटड़ी डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ बंद थे बाद दरिया में वारी उदामन लगी। कोटड़ी बैराज में निकलंदड़ वाहन में पानी घटी वो। डाउन स्ट्रीम में पानी बंद थे बाद इंसान तुड़े जानवर पीण के पानी लाय परेशान। ठठो सिचावल बदीन चंडू मोहम्मद खान में सूरत हाल संगीन थी वही। हैदराबाद डिवीजन के बिन्हीं जिलों ने मीरपुर खास डिवीजन में भी पानी बहरान संगीन थी वो। पानी न मिलने सबब पोखियल फसल भी सुकन लगा। मीरपुर खास शहीद बिनदराबाद सखर लाड़कानी डिवीजन में बाबादगार पानी लाय परेशान। फैजगंज चूअर जमाली बादगारंदी की खोट खत्म करने

जमायत इस्लामी जी अमीर पेट्रोल तां लेवी खत्म न करण जी सूरत में हड़ताल करण जो चेताव ॾेई छॾियो। हाफिज़ नईम चयो आहे त हुकूमत हर जुमे ते नई बजट जो ऐलान करे थी। हुकुमरान पंहिंजो शाही ख़र्च ख़त्म करण लाइ तयार न आहिनि। आवाम खां अॼु बि 105 रुपया पेट्रोल ते लेवी वरिती वञे थी। हुकूमत लेवी ख़त्म न कई त हड़ताल कंदासीं।

गंभट में एचआईवी ते जाब्तो न आयो वधीक एक बार दम ॾेई छॾियो एचआईवी सबब पौधनि जो अंग वधी पंज थी वियो समारा नारे जो एचआईवी सबब फौत थी पई दड़ोबर सां मुड़ुस ज़ाल खे कुहाड़ियुनि जा वार करे क़तल करे छॾियो घोट उमेद अली चांडियो में इल्ताफ़ चांडियो ज़ाल ज़ारा खे क़तल करण बाद थाणे ते पहुची गिरफ़्तारी बि ॾेई छॾी रोड़ी वे जो कारे इल्ज़ाम में ॾेर भाजाई खे क़तल करे छॾियो घोट जागिराणी में जवाबदार साहिब जागिराणी भाजाई साबरा जागिराणी खे क़तल कयो जवाबदार फरार थी वियो मटियाई भरिसां नौजवान जो गोली लॻल लाश ते वारसनि जो लाश रखी धरणो पुलिस जे खातिरनि ते धरणो ख़तम वारसन चयो त नौजवान इमरान माची खे मरीब बिरादरीअ जे माण्हुनि पैसनि जी देती लेतीअ तां क़तल कयो आहे पुलिस जी मरीब बिरादरी जे घरनि ते चढ़ाई चार शकी गिरफ़्तार घोट की ज़िले जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि जे पंज ॾींहं गुज़रण बावजूद बिजली बहाल न थी सघी तूफान सबब बंदि थियल बिजली सेपको बहाल करण में नाकाम बिजली जी बंदि सबबि मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में पीअण जे पाणी जो बि बहरान पैदा थी वियो राधन गिरड स्टेशन खे बि पंज ॾींहं गुज़रण बावजूद बिजली न मिली कार वहिंवार ठुप इलाक़ेवासी परेशान पनू आखिल तालके जे बि पंज ॾींहं गुज़रण बावजूद बिजली बहाल न थी सख़्त गर्मी दौरान बिजली जी बंदिश ते शहरी परेशान

0: Sokrillo, Yosa Natalia, una tía Sanabel, pero Nancy Tore, Ken Marimara, Rosati, Ciudad de Tatia, ni Nancy Tore.
1: खैरपुर में औरतों जो पुलिस खिलाफ एहतजाज 15 इंचार्ज दोषी न रखने का नौजवान के खंभे गुम करने का इल्जाम औरतन चमड़ा 15 इंचार्ज यूसुफ नारे जो दोषी रखने का इनकार से मुर्तजा लुंड के खंभे गुम किया है। कूड़न केसन में फसायण जो भी धमकियों ले रहा है। पुलिस ऑफिसर जो वीडियो वायरल थे बाद एसएसपी यूसुफ नारे जो के मुअतल कर छो। पुलिस वरी एहतजाज कर औरतन समेत 21 जन से केस दाखिल कर छो।
2: खबर पई वही वॉशरूम में भेनरूम वज मिलो जान बचाए निकी आस दाद के जान के खतरो
1: फरोज में स्पेशल ब्रांच जेल कार से पसंद पढ़ो कर नारी के वारसन के इल्जाम पसंद पढ़ो कर नारी फौजिया खोखर जो वीडियो बयान सोशल मीडिया से वायरल। वारसन से कैंसर यरगमार बयान जो इल्जाम नारी फौजिया खोखर चाहिए इमदाद सोलंगी से 6 महीना अग शादी कई हुई ईद के माइटन वट घुम वयस यरगमार बनाया हो। अदालत में मुड़स के कत्ल करने जो मनसूबो जोड़ो वो हो। हयाती के खतरो है असा के तहफुज फराम किया वे।

0: रामली में ट्रक के टक्कर में अगुणो एमएस डॉक्टर लक्ष्मण मेघवाल फोत कोटली कबीर भरसा भी कौमी शाहरा हादसो हिंगोरजा वासी उस्ताद शकील अहमद भुट्टो चिबाड़ की फोत थी पो सिद्धार्थपुर वेझो ट्रेन के टक्कर में खालिक कबर हयाती विञाए वेठो।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीएफएम 91.6।
3: हैदराबाद, दादू, दादा, जेकबाबाद, नवाब शाह, क्वेटा एंड चित्राल। You're listening to the Hot FM Network.

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर था भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो लई।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंकर हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंकर हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी दादा मियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: इस फोन के कैमरे का तो रिजल्ट ये तो
3: एक और नया सूट। ये किस सहेली ने दिए आप?
4: एक्सक्यूज मी, मेरी तरफ से गिफ्ट।

0: जमाना नहीं बदला, बेटियों के बारे में लोग अब भी वही रवायती जहन रखते हैं।
1: हम बेटी हैं, कोई गले का फंदा थोड़ी है।
2: तुम एक खोखली औरत हो, मर्दों से दिल लगी करने वाली।
3: अगर मेरे बेटे को ये ना मिले ना तो मैं पागल हो जाएगा।
1: मेरी मोहब्बत के काबिल है वो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अरब मीडिया मौजूद मोहसन नकवी आम तौर से अज तेहरान पे चलो अमरीका ईरान विच में मुंजमद असासन की बहाली वाले मामले से अगबराई थी है। गरु वजीर मोहसन नकवी ईरान ए अमरीका विच में थींदड़ मुआहदे से मुशावरत कंदो। सदर ट्रंप ईरान से गलन जो मुद्दों 60 डी रखना चाहे तो मुंजमद असासन की बहाली से भी गालू थन्द। डोनाल्ड ट्रंप मुंजमद ईरानी असासा बहाल कर 1.5 लाख खत्म कर सके तो। अमरीका लाइ ईरान से मुआहदे लाइ 24 अरब डॉलर का वरी रकम ना। ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसन रज़ाई चो है अमरीका के ईरान जा शर्त कबूल करने ते मजबूर किया वेंदो। अली अकबर वलायती चो है ईरान जो ताकतवर थियण वारो यूरोप जो वायतो ख्वाब हकीकत में तब्दील थी चुको है। ईरान वधीक मजबूत थी रहो है ख्याली नक्शा भी तब्दील थी रहा है। चटादार अमुल लाइ बराबरी वारो निज़ाम के हथी डनी पवंदी। अमरीका ए ईरान जहा एक भेरों बीहर एक बे हमला। अमरीकी फौज जहा ईरान के इलाके क्रोक ए बेट कुशेम ते हमला। जवाब में ईरान के कुवैत ए बहरीन में अमरीकी अड्डन के निशानों बढ़ाने की दावा। अमरीकी सेनका मूजिब अमरीकी फौज ईरान के 6 मिसाइल के रोको। 7 हदफ तीन पहुंचण में नाकाम रहो। 4 ईरानी ड्रोन्स के बयाबना हुरमुस में तबाह किया वो। अमरीकी बहरी बेड़े के निशानों बणजण वाले ईरानी दवा दुरुस्त है। ईरान के पासदार इनकलाब चो है अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत ए बहरीन में अमरीकी अड्डन के निशानों बनाए वो है। अमरीकी कार्रवाई जारी रही तो आबना हुरमुस के मुकम्मल तौर से बंद किया वो जिनों जिम्मेवार अमरीका होंगे।

वफ़ाक़ी हुकूमत पारां सरकारी मुलाज़मनि जी पघारुनि में 10-15% ताईं वाधि करण ते ग़ौर। हाणे वारी वज़ारत पघारुनि में वाधि बाबति तजवीज़ूं वज़ीर आज़म खे मोकिले छॾियूं। ज़रियनि जो चवणु आहे त हाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सरकारी मुलाज़मनि जी पघारुनि में 10-15% ताईं वाधि करण जी तजवीज़ डि॒नी आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सरकारी मुलाज़मनि जी पघारुनि में वाधि जो फ़ैसिलो इतिहादियुनि सां मुशावरत बाद कंदो। कराची में तरक़ियाती कम जारी आहिनि। शहरनि यूनिवर्सिटी रोड सबबि ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾिनो। यूनिवर्सिटी रोड खे जुलाई जे आख़िर ताईं खोलियो वेंदो। सीनियर सूबे वज़ीर शहरजील इनामियाणी चयो आहे त कराची पोर्ट सिटी आहे, मोटरवे जी शुरूआत हितां खां थियणु घुर्जे। वफ़ाक़ सदाई मोटरवेज़ जे मामले ते सिंध खे घटि तरजीह ॾिनी आहे। पूरे मुल्क जी ट्रांसपोर्ट सिंध जे बुनियादी ढांचे खे नुक़सान पहुचाए थी। पूरे मुल्क में मोटरवेज़ ठही विया आहिनि, पर सिंध में नाहिनि ठही सघिया।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: हैदराबाद जादू जेकबाबाद नवाबशाह क्वेटा एंड चित्राल। You're listening to the Hot FM Network.

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम कहां के सच्चे थे, दर्द पी के मरते थे, जहर पी के जीते थे, जिंदगी के धोखे में हर किसी से लड़ते थे। हम कहां के सच्चे थे।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर था भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network, GFM 88 Network, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुगर खां भी डाढा।
2: सिंध की है GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: दिल ये में।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: किया है सिंध जी दिल ये मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो,
1: मेरी जिंदगी है तू,
2: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

डोनाल्ड ट्रंप मुंजमद ईरान असा सां बहाल करे डेला खत्म करे सके तो अमेरिका लाए ईरान सां मुआदे लाए 24 अरब डॉलर का वरी रकम ना है। ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रज़ाई चुआ है तो अमेरिका के ईरान जा शर्त कबूल करने ते मजबूर किया वेंदो। अली अकबर विलायती चुआ है तो ईरान के ताकतवर थियण वारो यूरोप जो बवायतो ख्वाब हकीकत में तब्दील थी चुको है। ईरान वट वधीक मजबूत थी रहियो आहे ऐं ख्याली नक्शा बि तब्दील थी रहिया आहिनि। जरादार अमुल बराबरी वारे निज़ाम खे हथी ॾियणी पवंदी। अमरीका ऐं ईरान जा हिकु भेरो ॿीहर हिकु ॿिए ते हमला। अमरीकी फ़ौज जा ईरान जे इलाइक़े ग्रोक ऐं बेट कुशेन ते हमला। जवाब में ईरान जे कुवैत ऐं बहरी अमरीकी अॾनि खे निशानो बणाइण जी दवा। अमरीकी सेनका मूजिब अमरीकी फ़ौज ईरान जे 6 मिसाइल खे रोकियो, 7 हदफ ताईं पहुचण में नाकाम रहियो। 4 ईरानी ड्रोन्स खे व्यावनाए हुरमस में तबाह कयो वियो। अमरीकी पहिरीं भेरे जे निशानो बणजण वारी ईरानी दवा दुरुस्त न आहे। ईरान जे पासदारनि इनकलाब चयो आहे त अमरीकी हमलनि जे जवाब में कुवैत ऐं बहरीन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो आहे। अमरीकी कार्रवाई जारी रहियूं त अबनाए हुरमस खे मुकमल तौर ते बंदि कयो वेंदो, जंहिंजो ज़िमेवार अमरीका हूंदो। सऊदी अरब कुवैत ऐं बहरीन पारां हमलनि जी मज़म्मत। हमला ख़ुदमुख़्तियारी जी भञकड़ी करार। हमला रोकण ऐं आबनाए हुरमस खे खोलण जो मुतालबो। बहरीनी परडे॒ही वज़ारत चयो आहे त मिज़ाइल ऐं ड्रोन ज़रिए अमुन क़ाइम नथो करे सघिजे। ईरान हमलनि जो सिलसिलो बंदि करे बहरीन जे सब्र खे कमज़ोरी न समझो वञे। बहरीन पंहिंजी सलामती, ख़ुदमुख़्तियारी, दिफ़ा ऐं अवाम जी सलामती को बिठा न कंदो। कुवैती परडे॒ही वज़ारत चयो आहे त हमला मुल्की ख़ुदमुख़्तियारी ख़िलाफ़ आहिनि, दुरुस्त करार नथो ॾेई सघिजे। कुवैत दिफ़ा तहत कदम खणण जो हक़ रखे थो। सऊदी अरब चयो आहे त बहरीन ऐं कुवैत ते हमला आलमी सलामती लाइ ख़तरो आहिनि।

दड़ो भरसा मुड़स ज़ाल के कुआड़ी हणी कतल कर छो गोठ में दली चांडियो में अल्ताफ चांडियो ज़ाल ज़हरा के कतल करण बाद थाने ते पहुंची गिरफ्तारी भी छी रोड़ी वेझो कार इल्ज़ाम हेठ डेर भाजई के कतल के गोठ जागीरानी में जाबदार साहब जागीरानी भाजई साबरा जागीरानी के कतल कर जाबदार फरार थी। मटियारी भरसा नौजवान जो गोली लगल लाश हथ वारसन जो लाश रखी दणो पुलिस के खातरन ते दणो खत्म वारसन चो त नौजवान इमरान माशी के मरी बरादरी के मानन पैसन जी देती देती ता कतल कयो आए पुलिस के मरी बरादरी के घरन ते चढ़ाई चार शकी गिरफ्तार। गोडकी जिले के मुख्तलिफ इलाकन जी पंज डी गुजरण बावजूद बिजली बहाल न थी सके तूफान सबब बंद थियल बिजली सेब को बहाल करण में नाकाम बिजली की बंदिश सबब मुख्तलिफ इलाकन में पीने के पानी जो बोहरान पैदा थी वो रांधण गिरद स्टेशन के भी पंज डी गुजरण बावजूद बिजली बहाल न थी कारोबार टिपो इलाकेवासी परेशान पनवाकिल जिले की पंज डी गुजरण बावजूद बिजली बहाल न थी सख्त गर्मी दौरान बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। कराची में दिल की सब का वही अस्पताल एन आई सी वी डी के स्टेप डाउन यूनिट के टन डी का एसी बंद यूनिट में दाखिल मरीजन की गर्मी सब हालत खराब कैथले में मुंतकिल कल मरीजन के इंतजामिया गर्मी के हवाले कर छो मरीज पान के विजणा हणी गर्मी का बचाण लगा इंतजामिया यूनिट की एसी बहाल करण लाय कदम न क्या। खैरपुर में औरतों जो पुलिस खिलाफ एहतजाज 154 की दोस्ती न रखने था नौजवान के कम में गुम करने जो इल्जाम औरतों जो चवण है तो 154 यूसुफ नारे जो दोस्ती रखने का इनकार से मुर्तजा लुंड के खंभे गुम किया है उड़न केसन में फासायण की धमकी दे रो है पुलिस ऑफिसर जो वीडियो वायरल थे बाद एसएसपी यूसुफ नारे जो को मुअतल कर छो पुलिस वरी एहतजाज कदड़ औरतों समेत 21 जणों से केस दाखिल कर छोड़ा।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो,
1: मेरी जिंदगी
2: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: या है सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: काश हमारे पास वैसी गाड़ी होती चमचमाती भी
4: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए

0: कहती हैं अम्मी, मैं मनोज होती जंगल से, अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता।
1: मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी दे दे।
2: देखिए मोहलत रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

देखिए कलंदर 14 अक्टूबर से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारो डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंधजी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल कही मारू सुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर था भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: या है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुबी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर था भी दादा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू सुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल जी मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हुकूमती वफद जी सरबराही नायब वज़ीर आज़म सरकार कंदो वफद में नाने वारो वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब ऐं ॿिया शामिल हूंदा।

वफ़ाक़ी हुकूमत पारां सरकारी मुलाज़मनि जी पघारुनि में 10 खां 15 सैकड़ो वाध जो ऐलान। नाणे वारे वज़ारत पघारुनि में वाध बाबति तजवीज़ वज़ीर आज़म खे मोकिले छॾियूं। ज़रियनि जो चवण आहे त नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सरकारी मुलाज़मनि जी पघारुनि में 10 खां 15 सैकड़ो ताईं वाध खणण जी तजवीज़ ॾिनी आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सरकारी मुलाज़मनि जी पघारुनि में वाध जो फ़ैसिलो इतिहाद सां मुशावरत बा कंदो। कराची में तरक़ियाती कम जारी आहिनि। शहरी यूनिवर्सिटी रोड सबब ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾिनो। यूनिवर्सिटी रोड खे जुलाई जे आख़िर ताईं खोलियो वेंदो। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम में चयो आहे त कराची पोर्ट सिटी आहे, मोटरवे जी शुरूआत हितां खां थियणु घुर्जे। वफ़ाक़ सदाई मोटरवेज जे मामले ते सिंध खे घटि तरजीह ॾिनी आहे। पूरे मुल्क जी ट्रांसपोर्ट जे बुनियादी ढांचे खे नुक़सान पहुचाए थी। पूरे मुल्क में मोटरवेज ठही विया आहिनि पर सिंध में न ठही सघिया।

पाकिस्तान जो अमन वार कोशिशू रंग ॾेखारण लॻियूं। ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि में अहम अकबराई। ईरान जे मुंजमंद असासन बाबति ब्रेक थ्रू थियण जा इम्कान। वफ़ाक़ी ग़रीब वज़ीर मोहसिन नक़वी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात बाद तहरान फाथल। मोहसिन नक़वी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो अहम पैगाम ईरानी सुप्रीम लीडर ताईं पहुचाईंदो। अरब मीडिया मूजिबि मोहसिन नक़वी अहम दौरे ते तहरान पहुतो आहे। अमरीका ऐं ईरान विच में मुंजमंद असासन जी बहाली वारे मामले ते अकबराई थी आहे। ग़रीब वज़ीर मोहसिन नक़वी ईरान ऐं अमरीका विच में थींदड़ माहिदे ते मुशावरत कंदो। सदर ट्रम्प ईरान सां ॻाल्हियुनि जो मुदो 60 ॾींहं रखण चाहे थो। मुंजमंद असासन जी बहाली ते बि ॻाल्हियूं थींदियूं। डोनाल्ड ट्रम्प मुंजमंद ईरानी असां सां बहाल करे 1,50,000 ख़तम करे सघे थो। अमरीका लाइ ईरान सां मुआदे लाइ 24 अरब डॉलर खां वरी रक़म नाहे। ईरानी सुप्रीम लीडर जे सलाहकार मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमरीका खे ईरान जा शर्त क़बूल करण ते मजबूर कयो वेंदो। अली अकबर वलायती चयो आहे त ईरान जे ताक़तवर थियण वारो यूरोप जो बाहितो ख़्वाब हक़ीक़त में तब्दील थी चुको आहे। ईरान वधीक मज़बूत थी रहियो आहे ऐं ख़्याली नक्शा बि तब्दील थी रहिया आहिनि। जटादार अमुन लाइ बराबरी वारे निज़ाम खे थी ॾियणी पवंदी। अमरीका ऐं ईरान जा हिकु भेरो ॿीहर हिक ॿिए ते हमला। अमरीकी फ़ौज जा ईरान जे इलाइक़े ग्रूप ऐं बेट कशीम ते हमला। जवाब में ईरान जी कुवैत ऐं बहरीन ते अमरीकी अॾनि खे निशानो बणाइण जी दावा। अमरीकी सेनका मूजिबि अमरीकी फ़ौज ईरान जे 6 मिसाइल खे रोकियो, 7 अदब ताईं पहुचाइण में नाकाम रहियो। 4 ईरानी ड्रोन्स खे बि आपनाए हुनस ते तबाह कयो वियो। अमरीकी बहरी बेड़े जे निशानो बणजण वारी ईरानी दवा दुरुस्त न आहे। ईरान जे पासदारनि इनकलाब चयो आहे त अमरीकी हमलनि जे जवाब में कुवैत ऐं बहरीन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो आहे। अमरीकी कार्रवाई जारी रहियूं त अबनाए हुर्मुज़ खे मुकमल तौर ते बंदि कयो वेंदो, जंहिंजो ज़िमेवार अमरीका हूंदो।